सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे

आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों, दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए, जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: दर्शनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।
1: परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि बारिश में आपड़े कई कई एवी सब्जी करो जिन तक की आपड़े वधारे आय प्राप्त करी सक। तो अना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घना कनी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इन पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमर दरेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वाघ रेडियो 90.8 FM माते।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बोन हूँ था का
2: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
8: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है बच्चों को भूख न लगने के कारण और उसके क्या उपाय हो सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कशिश की शिशु की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वही बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं।
0: जी हाँ,
1: जिस कारण खाने पीने में वे आनाकानी करते हैं और जब भी बच्चों को कुछ खिलाने की कोशिश की जाती है तो भूख न होने की बात कहकर वो खाने से बचते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, अगर शिशु पेट भरकर खाना नहीं खाता है तो इसके पीछे साधारण से लेकर कुछ गंभीर कारण भी हो सकते हैं। तो आज हम कार्यक्रम में कशिश इसी विषय पर ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं हमारे श्रोता साथियों के साथ में।
0: जी हाँ।
1: कि बच्चों को भूख न लगने के क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से छोटे मोटे उपाय कर हम इस स्थिति से बच सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें तो ढेर सारी होंगी लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों को गीत सुनवाएं हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ,
2: लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे जुमा रहा तो

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में भूख न लगने की क्या कारण हो सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: अब यही अंजलि जी, अगर हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं कि बच्चों को भूख न लगने का क्या मतलब हो सकता है, तो श्रोता साथियों, भूख न लगने का सबसे साधारण मतलब यह होता है कि बच्चे का अपनी मर्जी से या किसी अन्य कारण से पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं कर पाना। कह सकते हैं श्रोताओं की बच्चे की ठीक तरह से भोजन न करने से उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और उसका जो विकास दर है वो भी धीमा होने लगता है।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि 2 से 5 साल तक के बच्चों को भूख न लगना या कम लगना आम समस्या होती है। इस उम्र के लगभग कई बच्चों में यह समस्या देखी जाती है। ऐसे बच्चे खाना खाने से मना करते हैं, फिर धीरे धीरे खाने की बातों की प्रति रुचि कम होने लगती है और उनका कुछ भी खाने को मन नहीं करता। यही बात करें कि क्या कारण है श्रोता साथियों भूख न लगने के, तो हम देखते हैं कि बच्चों को भूख न लगना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी बीमारी के लक्षणों में से एक होता है, जैसे कि पेट में कीड़े होना, गलसुआ होना, दांत आना, शरीर में आयरन की कमी होना, हेपेटाइटिस ए का टीकाकरण, एनीमिया, ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के अलावा बच्चों को भूख न लगने के कुछ अन्य कारण भी हैं, जो कशिश आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, दोस्तों अगर आप अपने बच्चे पर खाना खाने के लिए दबाव डालते हैं तो ऐसे में आप देखते हैं कि बच्चा खाना खाने से मना कर रहा होता है।
1: जी हाँ,
0: साथ ही पेय पदार्थ जैसे कि दूध या जूस या फिर कोई मीठे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन से भी बच्चों को भूख नहीं लगती है अंजलि जी। कई बार परिवार वालों के डर से भी, धमकी से भी, या फिर कह सकते हैं कि सजा के डर से भी बच्चे खाना खाने से मना कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: और हम देखते हैं कि कई बच्चे दूसरों का ध्यान खींचने के लिए भी खाना नहीं खाते हैं।
1: जी हाँ, हम देखते हैं कशिश के एक उम्र के बाद बच्चे अपनी पसंद की चीजें खाना ही पसंद करते हैं और माता पिता के अनुसार खाना वे पसंद नहीं करते।
0: जी बिल्कुल,
1: कई बार बच्चे परिवार के सदस्यों की नकल उतारते हैं। ऐसे में अगर परिवार का कोई सदस्य किसी विशेष आहार का सेवन नहीं करता तो बच्चे भी वह खाने से मना कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें पता चलते हैं कि बच्चों को भूख नहीं लग रही है। और यही बात करें कुछ ऐसी चीजों की जो प्रमुख तौर पर बच्चों में देखी जाती है कि 1 महीने तक भूख की कमी रहना, खाना खत्म करने में समय लगना, स्वयं खाना खाने से मना करना, खाते समय नखरे करना या चिड़चिड़ापन दिखाना, आधी रात को खाने की जिद करना, अधिक समय तक स्तनपान या बोतल से दूध पीने की जिद करना, समय और उम्र के साथ आहार की मात्रा का न बढ़ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि बच्चे जो हैं उन्हें भूख कम लग रही है या न के बराबर लग रही है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में आज हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही है, हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों में भूख न लगने की आदत पड़ जाती है और कई बार वो बच्चे ऐसे ही झूठ मूठ में खाना खाने में आनाकानी करने लगते हैं। तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे भी कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है, यही बात करें कि बच्चों के लिए कितनी मात्रा में भोजन पर्याप्त होता है।
1: हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, लगभग 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध का ही सेवन करता है। 6 महीने के बाद बच्चों को ठोस आहार दिया जाता है। अगर हम बात करें 6 से 12 महीने तक के बच्चे के लिए, तो श्रोता साथियों, इस उम्र के बच्चे आधा कप नर्म आहार लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: उसके लिए हम उन्हें मेश किया हुआ केला, उबले हुए मटर, गाजर, शकरकंद, नाशपाती और इसके साथ माँ का दूध भी पिला सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ अगर बात करें 9 से 12 महीने तक के बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, तो उन्हें हम उबली हुई सब्जियाँ, छिले हुए फल, खिचड़ी, शीरा, खीर, ये सारी चीजें दे सकते हैं। और ये सारी चीजें दिन के 2 ठोस आहार के बीच में 3 से 4 बार हम थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, इस तरीके से ये जो आहार की चीजें हैं वो उम्र के अनुसार बढ़ती जाती है, और इन सारी बातों का अगर माताएं ध्यान रखती हैं कशिश, तो हम देखते हैं कि बच्चों का विकास सही तरीके से होने लगता है।
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: बच्चे अगर इन सारी चीजों को खाने से मना करते हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं बच्चों के अंदर, उसकी वजह से वो मना करते हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन लंबे समय तक अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं और उन्हें भूख नहीं लग रही है, तो हम चिंता कर सकते हैं और तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि समस्या कुछ ज्यादा बढ़े उससे पहले निवारण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ दिलीप जी। इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए कुछ तरीके भी अपना सकते हैं। जैसे कि साथियों, जब बच्चा आपका खाना खाए तो उसे टीवी, वीडियो गेम, मोबाइल या फिर कहें कि कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज से आप दूर रखें।
0: जी हाँ।
1: बच्चे को हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ आप खिलाते रहें। साथ ही कोशिश करें कि बच्चे के खाने का समय आधे घंटे से ज्यादा न हो, वरना बच्चा बोर होने लगता है।
0: जी हाँ।
1: कह सकते हैं कि बच्चे को हर समय एक ही तरह का खाना न खिलाएं। उसके खाने में आप अलग अलग चीजें दे सकते हैं आप उसे, जिससे उसकी खाने में रुचि बनी रहेगी।
0: जी बिल्कुल कशिश। इसके साथ अगर बच्चा खाने से मना कर रहा है तो जबरदस्ती खाना उसके मुंह में हमें नहीं डालना है। जब बच्चा चम्मच पकड़ना सीख जाए तो खाने के लिए उसे एक अलग चम्मच देनी है।
1: हाँ।
0: स्वयं खाने के लिए हमें उसे प्रोत्साहित भी करना है और शुरुआत में ढेर सारा खाना हमें नहीं देना है, थोड़ा ही खाना देना है। जब बच्चा प्लेट में रखा खाना खत्म कर दे तभी आप उसे और भी दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: खाने के समय हमें स्नैक्स, जूस या अधिक मात्रा में पीने के लिए दूध नहीं देना चाहिए। इन सब की वजह से हो सकता है कि बच्चा खाना ठीक से ना खा पाए। श्रोता साथियों, 2 समय के खाने के बीच में, जैसे कि लंच और डिनर के बीच में, शाम को स्नैक हम बच्चों को दे सकते हैं। इस बात का भी ध्यान हमें जरूर रखना है कि उसकी मात्रा अधिक न हो।
1: जी बिल्कुल।
0: यदि बच्चा खाना खाने में नखरे करता है तो उसे डराने, धमकाने या सजा देने की जगह उसे प्यार और धैर्य के साथ हमें व्यवहार करना होगा।
1: बिल्कुल। साथी श्रोता, उसके खाने और स्नैक्स का समय आप निश्चित पहले ही कर लें और एक समय प्रक्रिया बना लें। उसी के आधार पर बच्चे को आप खाना दें और अगर वह हर समय कुछ न कुछ खाता रहेगा तो सही खाने के समय अंजलि जी उसकी भूख खत्म हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल।
1: और वह ठीक से उस समय भोजन नहीं कर पाए। साथी श्रोता साथियों, आप कोशिश करें कि पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाए, क्योंकि अंजलि जी कई बार अकेले खाने से भी बच्चे का खाना खाने का मन नहीं करता है।
0: जी हाँ।
1: खाने के ऊपर सॉस या उसकी पसंद की चटनी आप डिजाइन कर सकते हैं, इससे उनकी खाने में रुचि और भी बढ़ेगी।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों बताना चाहेंगे कि बच्चों को फल और सब्जियों को उबाल कर उसकी प्यूरी बनाकर आप खिला सकते हैं। इससे उन्हें खाने में आसानी होगी और वे चाव से खा पाएंगे।
1: जी जी।
0: बच्चों को कितना खाना खाना है यह हमें उन पर ही छोड़ देना है। अगर वह खाना खत्म नहीं करता है तो उस पर ज्यादा दबाव हम न डालें। खाने की टेबल पर उससे बातें करें। जब बच्चा बात समझने लगे तो उन्हें अपने बचपन के किस्से सुनाएं और बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद था। आप उन्हें रंग बिरंगी सब्जियां, फल और बहुत सारी ऐसी चीजें खिलाकर उनके खाने के प्रति आकर्षण को बढ़ा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथी श्रोताओं, बच्चे को रोज नाश्ता करने की आदत आप डलवाएं। नाश्ता न करने से बच्चा भूखा और थका हुआ महसूस करेगा। साथ ही आपको बताएं तो स्नैक्स में आप अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे दे सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: उन्हें खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीच बीच में आप ट्रीट जैसे कि चॉकलेट दे सकते हैं, आइसक्रीम, कैंडी आप ये दे सकते हैं। लेकिन इन्हें रोजमर्रा के खाने में आप शामिल नहीं करें साथियों।
0: जी हाँ।
1: बच्चे के लिए खाने को लेकर पूरा दिन पीछे न पड़े यानी कि उन पर दबाव बिल्कुल न डालें। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आप विकल्प के तौर पर उसे दूध न दें। साथ ही जब बच्चे को भूख लगे तो उसे किसी प्रकार का पेक्ड फूड भी आप न दे श्रोता साथियों।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिनके माध्यम से हम बच्चों को खाने के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें खाना खिला सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: दोस्तों यही बात करें कि बच्चों की भूख बढ़ाने के कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे कि हमें उन्हें आयरन युक्त आहार देना है, विटामिन सी युक्त आहार देना है, मीठे खाद्य पदार्थ देने से हमें बचना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। तो श्रोता साथियों, आशा करते हैं कि ये जो सभी बातें रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चों का पर्याप्त मात्रा में भोजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके विकास की जो दर है वो कम हो जाती है और सही तरीके से उनका विकास नहीं हो पाता।
1: जी
0: हाँ। तो ऐसे में कशिश आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: तो श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा और कशिश हमारे श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है घूमने फिरने और पिकनिक का क्या महत्व है। आज के युवा का जीवन तेज गति, प्रतिस्पर्धा, पढ़ाई, करियर और तकनीक से घिरा हुआ है।
2: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं मनीषा और कशिश की हर दिन नई चुनौतियां सामने आती है। ऐसे में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: केवल पढ़ाई या काम में लगे रहना ही सफलता का मार्ग नहीं बल्कि जीवन में आनंद, ताजगी और अनुभव का होना भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: घूमना फिरना और पिकनिक ऐसी गतिविधियां हैं जो युवाओं को जीवन की भाग दौड़ से कुछ समय निकालकर स्वयं को समझने, प्रकृति के करीब आने और नई ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
2: जी
1: हम देखते हैं कि घूमने फिरने का अर्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना नहीं है बल्कि यह नए अनुभव, नई संस्कृतियों और नए विचारों से परिचित होने का माध्यम भी है। जब युवा अपने घर, विद्यालय या कार्यस्थल से बाहर निकलते हैं, किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है, वे दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सीखते हैं।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें जरूर होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम गीत संगीत के साथ मनोरंजन उन्हें पहले करवाते हैं,
0: बिल्कुल,
2: तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले गीत के साथ की जाए।
0: बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं घूमने फिरने और पिकनिक का महत्व।
1: बिल्कुल
0: कशिश और जागृति जी, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन अनेक जिम्मेदारियों, कार्यों और चुनौतियों से भरा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम, पढ़ाई, व्यवसाय और घरेलू जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे स्वयं के लिए समय निकालना भी कठिन समझते हैं। लगातार काम करने से शरीर और मन दोनों थक जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में श्रोता साथियों, घूमना फिरना और पिकनिक जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और ताजगी का संचार करती है।
1: बिल्कुल,
0: यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है साथियों, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का भी महत्वपूर्ण साधन है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो केवल पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगिता या फिर जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। बल्कि जागृति जी और मनीषा, जीवन का वास्तविक आनंद तभी है जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को भी समझते।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि आपने बताया कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे जो युवा साथी हैं वे लगातार करियर और डिजिटल दुनिया में ही व्यस्त होते जा रहे हैं। ऐसे में घूमना फिरना और पिकनिक केवल उनके लिए मनोरंजन का साधन नहीं होगा, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन जाएगा।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि घूमने फिरने का मतलब है कि हम नई जगहों पर जाएं,
0: बिल्कुल
1: नए लोगों से मिले, नई संस्कृतियों को जानें और नए अनुभवों से परिचित हुएं।
2: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज के समय में युवाओं के सामने तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। परीक्षा का दबाव हो गया, करियर की चिंता हो गई, भविष्य की अनिश्चितताएं हो गई। कई बार हम देखते हैं मनीषा और कशिश की ये सारी चीजें मानसिक थकान पैदा कर देती है।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे में घूमना फिरना और पिकनिक तनाव कम करने का प्रभावी उपाय साबित होते हैं। प्राकृतिक वातावरण में बिताया गया समय मन को शांति देता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि घूमने फिरने से युवाओं का ज्ञान बढ़ता है, किताबों में पढ़ी गई बातें जब वास्तविक रूप में देखने को मिलती है तो सीखने का अनुभव और भी गहरा हो जाता है।
1: जी हाँ,
2: ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, पहाड़ियों, नदियाँ, सांस्कृतिक केंद्रों की यात्रा युवाओं के ज्ञान को समृद्ध बनाती है।
1: बिल्कुल,
2: केवल जानकारी ही नहीं प्राप्त करते बल्कि अनुभव भी अर्जित करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं घूमना फिरना केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक प्रकार का व्यायाम भी है। यात्रा के दौरान पैदल चलना, पहाड़ चढ़ना, खेल कूद करना और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना शरीर को सक्रिय बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारे शरीर को भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि हमारे शरीर की ऊर्जा है वो भी बढ़ती है, हमारा रक्त संचार है वो अच्छा होता है, मोटापा भी नियंत्रित होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी श्रोता साथियों मजबूत होती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही थकान और आलस्य भी दूर होता है। पिकनिक के दौरान बच्चे और बड़े सभी खेल कूद में भाग लेते हैं साथियों, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि घूमने फिरने का मतलब केवल पर्यटन स्थलों पर जाना नहीं होता साथियों, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने परिचित वातावरण से बाहर निकलकर किसी नई जगह का अनुभव करना।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ये किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा भी हो सकती है, किसी पहाड़ी क्षेत्र की सैर भी हो सकती है, या फिर जागृति जी हम किसी गांव का भ्रमण भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा जो पिकनिक होती है वो एक मनोरंजन कार्यक्रम होता है, जिसमें हम परिवार, मित्र या सहकर्मी के साथ किसी सुंदर स्थान पर जाकर समय बिताते हैं।
0: जी हाँ,
1: वहाँ जागृति जी हम खेलकूद, भोजन, संगीत, बातचीत और मनोरंजन के माध्यम से आनंद लेते हैं।
0: जी हाँ,
1: देखते हैं कि पिकनिक का उद्देश्य केवल मौज मस्ती करना नहीं होता बल्कि आपसी संबंधों को मजबूत बनाना होता है और मानसिक ताजगी प्राप्त करना भी होता है।
2: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश और मनीषा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है घूमना फिरना और पिकनिक का क्या महत्व होता है, तो बातें ऐसी ही बनी रहेंगी आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी घूमना फिरना और पिकनिक के महत्व को लेकर।
1: जी,
0: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि घूमने फिरने से युवाओं का ज्ञान भी बढ़ता है। किताबों में पढ़ी गई बातें जब वास्तविक रूप से देखने को मिलती है तो सीखने का अनुभव और भी गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की ऐतिहासिक स्थलों, जैसे कि हमने पहले बताया था संग्रहालय, पहाड़ों, नदियों और सांस्कृतिक केंद्रों की यात्रा युवाओं के ज्ञान को समृद्ध बनाती है। और कहा गया है मनीषा की यात्रा सिखाती है सहयोग करना, अनुशासन करना और जिम्मेदारी का योग करना।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि घूमने फिरने से जैसा कि बता रहे हैं कि हमारा आत्मविश्वास का विकास होता है। नए स्थानों पर जाना, नए लोगों से मिलना और नई परिस्थितियों का सामना करना व्यक्ति को साहसी बनाता है। साथ ही युवा चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं और उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है।
1: जी हाँ,
0: आत्मविश्वास भविष्य में उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज परिवार के सदस्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कई बार उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी समय नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: पिकनिक और यात्रा परिवार के सदस्यों को साथ में समय बिताने का भी अवसर देती है। हम देखते हैं कि अगर हम परिवार के साथ समय बिताते हैं तो हमें पारिवारिक संबंधित भी कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि आपसी प्रेम है वो भी बढ़ता है, हमारे रिश्ते हैं वो भी मधुर होते हैं, संवाद है वो भी बेहतर होते हैं, परिवार में एकता बढ़ती है और साथ ही बच्चों और बड़ों के बीच समझ भी विकसित होती है।
0: जी हाँ,
1: श्रोता
0: हाँ।
1: साथियों, परिवार के साथ बिताए गए ये पल जीवन भर यादगार बन जाते हैं।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। और जैसा कि हमने हमारे युवा साथियों को ये तो बताया था कि घूमने फिरने से ढेर सारे फायदे होते हैं।
0: जी हाँ,
2: अगर एक और बात यहाँ पर जाने साथियों, तो शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।
0: जी,
2: क्योंकि जागृति जी, घूमने फिरने के दौरान हम पैदल चलते हैं, चढ़ाई करते हैं और अलग अलग गतिविधियों में भाग लेना हमें पड़ता है। इससे शरीर हमारा सक्रिय रहता है और स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। देख सकते हैं कि नियमित रूप से इस प्रकार की यात्रा या फिर पिकनिक में भाग लेने से लोगों में मोटापा, आलस्य और तनाव जैसी समस्याएं भी कम देखी जाती है।
0: बिल्कुल,
2: साथ ही जैसा कि आपने भी बताया था कि किताबों में पढ़ा गया ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वास्तविक जीवन का अनुभव उससे भी ज्यादा मूल्यवान होता है।
0: जी हाँ, जी हाँ कशिश, क्योंकि यात्राएं युवाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। नए दृश्य, नई संस्कृति और नए अनुभव मन में नए विचार उत्पन्न करते हैं। कई महान लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक अपने अनुभव से प्रेरणा लेकर ही महान कार्य कर सके हैं।
1: जी हाँ,
0: इसलिए यात्रा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि रचनात्मक विकास का भी माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: घूमने फिरने से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। जब युवा कई लोगों के जीवन संघर्ष और उपलब्धियों को देखते हैं तो उन्हें अपने जीवन की चुनौतियां छोटी लगने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: वे समझते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है और उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि यात्रा का हर अनुभव जीवन का अनमोल सबक है।
1: बिल्कुल जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तकनीकी ने जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके कारण लोग घरों और कार्यालयों तक ही सीमित रह गए हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने लोगों की सक्रियता को कम कर दिया है।
2: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में हम देखते हैं कि घूमना फिरना और पिकनिक पहले से भी अधिक आवश्यक हो जाता है। यह हमें वास्तविक दुनिया से जोड़ते हैं साथियों, और जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं।
0: जी हाँ,
1: साथ ही जागृति जी और कशिश, कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि घूमना फिरना और पिकनिक मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
2: बिल्कुल,
1: ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं है साथियों, बल्कि मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, ज्ञान वृद्धि, सामाजिक विकास और पारिवारिक एकता के प्रभावी माध्यम भी है।
2: बिल्कुल,
1: यात्रा व्यक्ति को नई ऊर्जा, नई सोच, नए अनुभव प्रदान करती है। वहीं पिकनिक जीवन में आनंद, उत्साह और अपनापन को भी बढ़ाती है।
0: जी हाँ,
2: बिल्कुल मनीषा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यात्रा को एक चलता फिरता विद्यालय कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास की पुस्तक में पढ़ा गया कोई स्मारक जब अपनी आंखों से हम देखते हैं तो उसका प्रभाव अधिक गहरा होता है।
1: जी हाँ,
2: विज्ञान, भूगोल, संस्कृति और समाज से जुड़ी अनेक बातें यात्रा के माध्यम से ही हमें सहज रूप से सीखी जा सकती है जागृति जी।
1: बिल्कुल,
2: इसलिए विद्यालयों में हम देखते हैं कि समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है।
0: जी हाँ,
2: ऐसे में हमारे युवा साथियों को भी यात्राएं करनी चाहिए, जैसे कि वे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, आप ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
2: साथ ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक जो स्थल होते हैं उनकी यात्रा भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको ढेर सारी बातें सीखने को मिलेंगी।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि घूमने फिरने और पिकनिक का आनंद लेते समय कुछ बातों का ध्यान बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने भी बताया था। युवाओं के लिए भी बहुत जरूरी है कि वे यात्रा को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखें, बल्कि उसे सीखने और स्वयं को विकसित करने का अवसर माने। हम देखते हैं मनीषा कि हर यात्रा से कुछ नया सीखने का प्रयास हमें करना चाहिए, इससे यात्रा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि घूमना फिरना और पिकनिक जीवन को आनंद, ऊर्जा और नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण साधन है। ये युवाओं को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक गुण, आत्मविश्वास और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यात्रा व्यक्ति को केवल स्थानों से नहीं बल्कि अनुभव, संस्कृतियों और जीवन के वास्तविक पाठों से भी जोड़ती है।
2: बिल्कुल,
0: इसलिए युवाओं को अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर प्रकृति के बीच जाना चाहिए, नए स्थानों को देखना चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि रास्तों को महसूस करने का नाम भी है। घूमिए, सीखिए, मुस्कुराइए और हर यात्रा को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर बनाइए। जब युवा दुनिया को देखने निकलता है तब दुनिया ही नहीं उसका अपना जीवन भी बदलने लगता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
2: बिल्कुल,
1: और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
2: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
2: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि यात्रा बने जीवन की पहचान, ज्ञान, आनंद और सफलता का महावरदान।
1: जी हाँ।
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को,
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है दिशाटन के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु प्राणी हैं, हम हमेशा से नई जगहों को देखने, नए लोगों से मिलने और नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यही जिज्ञासा हमें अपने घर और क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकलकर देश विदेश के कई स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल,
0: देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करना ही दिशाटन कहलाता है। श्रोताओं, दिशाटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये ज्ञान, अनुभव, संस्कृति, व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। दिशाटन मनुष्य के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है अंजलि, और हमें जीवन के विविध रंगों से परिचित कराता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि दिशाटन यानी अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों, राज्यों, शहरों और गांवों की यात्रा करना, यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सीखने, समझने और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो बातें करेंगे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है देशाटन के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, देशाटन यानी कि घूमना या भ्रमण करना, कई देशों स्थानों प्रदेशों का भ्रमण करना देशाटन होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति कई संस्कृतियां, परंपरा, भाषा और जीवन शैलियों के निकट आता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि पुस्तकों से ज्ञान मिलता है लेकिन यात्राएं उस ज्ञान को अनुभव में बदल देती है।
0: बिल्कुल।
1: देशाटन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें हमारा ज्ञान बढ़ता है। किताबों में हम किसी स्थान के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर जो अनुभव मिलता है वह कहीं अधिक प्रभावशाली होता है।
0: जी हाँ।
1: जब हम राजस्थान के रेगिस्तान, हिमालय की पर्वत श्रृंखला, केरल की हरियाली, असम की चाय बागवान या गुजरात के रण को अपनी आँखों से देखें तो भूगोल केवल एक विषय नहीं रह जाता बल्कि जीवंत अनुभव बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: यात्रा हमें सिखाती है जागृति जी कि हमारा देश कितना विशाल है, विविधतापूर्ण है और समृद्ध है।
0: और हम कह सकते हैं अंजलि कि संसार स्वयं एक विशाल विद्यालय है और देशाटन उसका सबसे प्रभावी शिक्षक है।
1: बिल्कुल।
0: पुस्तकों से हमें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होते हैं लेकिन देशाटन हमें व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, जैसा कि अभी आपने बताया था। हिमालय की ऊंची चोटियों को देखकर हमें प्रकृति की महानता का अनुभव होता है।
1: जी जी।
0: रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों को देखकर संघर्ष और धैर्य की सीख मिलती है। ऐतिहासिक स्थलों को देखकर हमें अपने अतीत की गौरवशाली विरासत का ज्ञान प्राप्त होता है।
1: जी हाँ।
0: इस प्रकार श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि देशाटन शिक्षा का ऐसा माध्यम है जो जीवन भर याद रहता है।
1: जी जी।
0: भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक भाषाएं होती है, वेशभूषाएं होती है, अलग अलग खान पान होते हैं और परंपराएं हमें देखने को मिलती है। देशाटन के माध्यम से व्यक्ति इन विविधताओं को समझता है अंजलि, और उनके प्रति सम्मान का भाव विकसित करता है।
1: जी हाँ जागृति जी, भारत अनेक भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है। कभी कभी हम केवल अपने क्षेत्र की संस्कृति को ही जानते हैं, लेकिन जब हम देश के अन्य भागों में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनकी जीवन शैली को समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि विविधता के बावजूद हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं। देशाटन लोगों के बीच आपसी प्रेम, सम्मान और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है और यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: कई बार जागृति जी, हम बिना जाने किसी क्षेत्र, भाषा या समुदाय के बारे में धारणाएं बना लेते हैं, लेकिन जब हम यात्रा करते हैं और लोगों से सीधे मिलते हैं तो हमारी गलतफहमियां दूर होती है। देशाटन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति और हर संस्कृति में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है। यात्रा मन को खुला बनाती है और हमें दूसरों को समझने की क्षमता प्रदान करती है।
0: बिल्कुल अंजलि, जब कोई व्यक्ति राजस्थान से केरल जाता है या पंजाब से तमिलनाडु की यात्रा करता है, तब उसे ये अनुभव होता है कि भले ही हमारी परंपराएं अलग अलग हो, लेकिन हम सभी एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं।
1: बिल्कुल।
0: देशाटन राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देशाटन व्यक्ति के आत्मविश्वास और व्यवहारिक कौशल को बढ़ाता है। यात्रा के दौरान व्यक्ति नई परिस्थितियों का सामना करता है श्रोताओं, समस्याओं का समाधान खोजता है और कई प्रकार के लोगों से संवाद करता है अंजलि। इससे उसका व्यक्तित्व निखरता है। यात्रा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। ये वो समय प्रबंधन है, संसाधनों के उचित उपयोग है, निर्णय लेने की कला सिखाता है।
1: जी जी।
0: यही गुण आगे चलकर हमारे जीवन और करियर में सफलता का आधार बनते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति नई जगहों पर जाता है, नए लोगों से मिलता है, नई परिस्थितियों का सामना करता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: यात्रा के दौरान कई छोटी बड़ी चुनौतियां आती हैं। रास्ता ढूंढना, समय का प्रबंधन करना, नए वातावरण में स्वयं को ढालना, इन अनुभवों से व्यक्ति अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनता है।
0: बिल्कुल।
1: विशेष रूप से युवाओं के लिए देशाटन जीवन कौशल सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत में अनेक ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किले, संग्रहालय हैं। ये केवल इमारतें नहीं हैं, बल्कि जागृति जी हमारे इतिहास और संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। जब हम इन स्थानों का भ्रमण करते हैं तो हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों, संघर्षों और विरासत के बारे में जानने का अवसर मिलता है। देशाटन हमें अपनी संस्कृतियों से जोड़ते हैं और उनमें गर्व की भावना पैदा करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि। तो अंजलि, जैसे कि देशाटन के महत्व के बारे में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातचीत रह रही है, तो ये बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर देशाटन के माध्यम से ही हमें मिल पाता है। श्रोता साथियों, पर्यटन और देशांतर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। जब पर्यटक किसी क्षेत्र में आते हैं तो स्थानीय दुकानदारों, हस्तशिल्प कलाकारों, होटल संचालकों, वाहन चालकों और अन्य लोगों को रोजगार मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार देशाटन केवल यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है। जागृति जी, आज के व्यस्त जीवन में लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। देशांतर हमें पहाड़ों, नदियों, जंगलों, झीलों और समुद्र के निकट ले जाता है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मानसिक तनाव कम होता है, मन प्रसन्न रहता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।
1: जी हाँ,
0: जागृति जी, हमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व का एहसास भी हो पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप बता रहे हैं, तो जब व्यक्ति प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करता है तब उसे पर्यावरण संरक्षण के महत्व का वास्तविक अनुभव होता है।
0: जी जी,
1: वो समझता है कि प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण कितना जरूरी है। देशांतर लोगों को स्वच्छता, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के प्रति जागरूक बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे श्रोता साथियों पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी विकसित होती है। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से दुनिया की जानकारी हमें घर बैठे मिल जाती है, फिर भी वास्तविक अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। अंजलि, किसी स्थान की तस्वीर देखना और उस स्थान को स्वयं अनुभव करना दोनों ही अलग अलग बातें होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: देशांतर हमें वास्तविक जीवन से जोड़ता है। ये हमें लोगों की भावनाओं, संस्कृति और परिस्थितियों को समझने का अवसर देता है। इसलिए श्रोता साथियों, डिजिटल युग में भी देशांतर का महत्व कम नहीं हुआ है बल्कि और अधिक बढ़ गया है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि देशांतर का आनंद तभी सार्थक है जब हम जिम्मेदार यात्री बने। यात्रा के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुंचाएं और स्थानीय लोगों के प्रति विनम्र व्यवहार रखें। एक जिम्मेदार यात्री न केवल अच्छी यादें लेकर लौटता है बल्कि अपने पीछे सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ता है। देशांतर केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया नहीं है जागृति जी, बल्कि यह स्वयं को जानने, दुनिया को समझने की यात्रा है। यह हमारे विचारों को व्यापक बनाता है, अनुभवों को समृद्ध करता है और हमें एक बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।
1: जी हाँ,
0: जब हम अपने देश को करीब से देखते हैं श्रोता साथियों, तब हमें उसकी विविधता, चुनौतियों और संभावनाओं का वास्तविक परिचय मिलता है। देशांतर हमें यह सिखाता है कि भारत केवल नक्शे पर बना एक भूभाग नहीं बल्कि करोड़ों सपनों, संस्कृतियों और परंपराओं और भावनाओं का जीवंत संगम है।
1: बिल्कुल अंजलि, और यही हमें सिखाता है कि दुनिया किताबों के पन्नों से कहीं अधिक विशाल है और अनुभव से भरी हुई है। जब हम नए स्थानों को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और नए संस्कृतियों को समझते हैं, तब हमारे भीतर ज्ञान, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास का विकास होता है।
0: बिल्कुल,
1: देशांतर हमें संकीर्ण सोच से निकाल कर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा एक जागरूक, जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।
0: जी जी,
1: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये कहना चाहेंगे कि आज के युवाओं को देशांतर को केवल घूमने फिरने का साधन नहीं मानना चाहिए बल्कि सीखने और स्वयं को विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अपने देश को निकट से जानता है वही उसके विकास और उन्नति में सार्थक योगदान दे सकता है। इसीलिए आइए श्रोता साथियों, हम देशांतर की भावनाओं को अपनाएं, अपने देश के

0: पर्यटन की भावनाओं को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बस हम यही कहना चाहेंगे कि देशाटन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को समझने और स्वयं को बेहतर बनाने की अनमोल प्रक्रिया है। जैसा कि आपने बताया, जो युवा देशाटन को अपनाते हैं वे अनुभव से समृद्ध होकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं।
0: जी जी,
1: इसलिए श्रोता साथियों, घर की चौखट से बाहर निकलिए, दुनिया को पहचानिए, देशाटन से ज्ञान को बढ़ाइए और जीवन को महान बनाइए।
0: जी हाँ, तो जागृति जी, अब इन्हीं बातों के साथ समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवा देते हैं श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से देशाटन के महत्व को लेकर वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खावानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषय की।
0: जी
1: आज का विषय है मोबाइल और बढ़ते स्क्रीन टाइम का स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर। हम देखते हैं कि मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई हो, काम हो, मनोरंजन हो या फिर किसी से संपर्क करना हो, मोबाइल हर जगह हमारे साथ है।
0: जी
1: लेकिन क्या श्रोता साथियों, आपने कभी सोचा है जिस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है वही हमारे सेहत के लिए धीरे धीरे एक चुनौती बनता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: आज बच्चे हो या बड़े, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक घंटों मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखते हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और ऑनलाइन गतिविधियों ने मनीषा स्क्रीन टाइम को इतना बढ़ा दिया है कि इसका असर अब हमारे शरीर, दिमाग और सामाजिक जीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। आज कार्यक्रम में हम विस्तार से यही जानेंगे कि मोबाइल और बढ़ते स्क्रीन टाइम ने किस तरीके से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा की हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ मनोरंजन करवा दी हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल और स्क्रीन टाइम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, टेबलेट, कंप्यूटर और अन्य स्क्रीन आधारित उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षा, मनोरंजन, संचार, बैंकिंग, खरीदारी, कार्यालय के अधिकांश कार्य हम मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही करने लगे हैं। तकनीकी ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है साथियों, लेकिन इसके अधिक उपयोग ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी जन्म दिया है।
1: बिल्कुल,
0: वर्तमान समय में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग स्क्रीन के सामने पहले की तुलना में अधिक समय बिताने लगे हैं।
1: हाँ।
0: श्रोता साथियों, यही कारण है कि स्क्रीन टाइम आज की एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है।
1: बिल्कुल, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्क्रीन टाइम का अर्थ है वह समय जो हम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताते हैं।
0: जी हाँ,
1: जब यह समय जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारे स्वास्थ्य, व्यवहार और दिनचर्या को प्रभावित करने लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जरूरत और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन आज स्थिति यह है कि कई लोग प्रतिदिन 5 से 8 घंटे या उससे भी अधिक समय मोबाइल पर बिताते हैं। हम देखते हैं कि बढ़ते स्क्रीन टाइम के कई कारण हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का आकर्षण। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म लोगों को लंबे समय तक स्क्रीन से जोड़े रखते हैं। डिजिटल शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम की वजह से स्क्रीन का उपयोग बढ़ा है। बच्चे और युवा घंटों गेम खेलने में समय बिताते हैं। पहले लोग मैदानों में खेलते थे, परिवार के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब मनोरंजन का हिस्सा मोबाइल तक सिमट गया है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ गया है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम का सबसे अधिक प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। लगातार स्क्रीन टाइम देखने से आंखों को आराम नहीं मिल पाता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आंखों की थकान। हम देखते हैं कि लंबे समय तक मोबाइल देखने से आंखों की मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे आंखों में भारीपन और असुविधा महसूस होने लगती है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि इससे हमारे आंखों में सूखापन है वो भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम स्क्रीन देखते हैं तो सामान्य से कम बार हमारी पलकें झपकती हैं, इससे आंखों की नमी कम होने लगती है साथियों, और आंखों में सूखापन आने लगता है।
1: जी हाँ मनीषा, और इसका प्रभाव हमारे नींद पर पड़ता है।
0: जी हाँ,
1: रात को सोने से पहले मोबाइल चलाना आज आम बात हो गई है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर में नींद लाने वाले हार्मोन्स मेलाटोनिन के निर्माण को प्रभावित करती है। इसके कारण हम देखते हैं कि नींद देर से आती है, नींद पूरी नहीं होती, बार बार नींद टूटती रहती है, सुबह थकान महसूस होती है। श्रोता साथियों, लगातार खराब नींद से शरीर की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं मनीषा के अधिक स्क्रीन टाइम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है।
0: जी हाँ,
1: तनाव और चिंता की बात करें तो सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर कई लोग स्वयं की तुलना करने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: तनाव और चिंता बढ़ सकती है। इसी के साथ मोबाइल से दूर होने पर बेचैनी या गुस्सा आना डिजिटल निर्भरता का संकेत हो सकता है। लगातार बदलती जानकारी और वीडियो देखने की आदत ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी कम कर सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से मोबाइल और स्क्रीन टाइम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे लेकर बातें चल ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि बढ़ते स्क्रीन टाइम के क्या कारण हैं, साथ ही आंखों पर और नींद पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: अब यही बात करें बच्चों पर विशेष क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्रोता साथियों, बच्चों में अधिक स्क्रीन टाइम कई समस्या पैदा कर सकता है। बच्चे बाहर खेलने के बजाय मोबाइल पर समय बिताने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त को प्रभावित कर सकती है।
1: जी हाँ।
0: मोबाइल के कारण बच्चों का लोगों से सीधा संवाद कम होने लगता है। कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि मोबाइल देखते समय अधिकांश लोग गर्दन झुकाकर बैठते हैं। इससे गर्दन दर्द, कंधों में दर्द, पीठ दर्द और शरीर की गलत मुद्रा हो जाती है। ऐसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आजकल कम उम्र में लोगों में ये सारी जो समस्याएं हैं वो तेजी से देखने को मिल रही है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गलत बैठने की आदत है वो भी ज्यादा बढ़ रही है। स्क्रीन के सामने घंटों बैठने से शरीर की मुद्रा प्रभावित होती है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। साथ ही हम देखते हैं कि मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। जो लोग अधिक समय मोबाइल या कंप्यूटर पर बिताते हैं साथियों, वे कम शारीरिक गतिविधियां करते हैं।
0: जी जी।
1: इससे हम देखते हैं कि वजन बढ़ने लगता है और मोटापे का जोखिम है वो बढ़ने लगता है। साथ ही यही बात करें अगर मांसपेशियों के जकड़न की, तो हम देखते हैं कि एक स्थिति में लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर की मांसपेशियां हैं वो भी जकड़ जाती है और दर्द होने लगता है।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, जब व्यक्ति लंबे समय तक बैठा रहता है और शारीरिक गतिविधियां कम करता है तो उसका प्रभाव हृदय स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। निष्क्रिय जीवन शैली, मोटापा, उच्च रक्तचाप, अन्य स्वास्थ्य जोखिम है वो बढ़ सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, स्क्रीन टाइम के साथ नियमित शारीरिक गतिविधियां भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं।
0: जी हाँ मनीषा, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार को भी प्रभावित करता है।
1: जी बिल्कुल।
0: कई बार परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इससे बातचीत कम होती है, भावनात्मक जुड़ाव घटता है और रिश्तों में पड़ सकती है। इसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्क्रीन टाइम को कम करने के कुछ उपाय हैं जो हमें अपनाने हैं।
1: जी।
0: इसके लिए हमें मोबाइल का उपयोग निश्चित समय निर्धारित करना होगा कि
1: जी
0: हम
1: हाँ।
0: उसे समय पर मोबाइल को हाथ लगाएं। सोने से कम एक घंटा पहले स्क्रीन का उपयोग बंद करना है। मोबाइल की जगह बातचीत, खेल और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। शारीरिक गतिविधियां स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो हमें उनको प्रेरित करना है और हमारे बच्चों को सिखाना है कि जो परंपरागत खेल थे वो किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर 20 से 30 मिनट बाद कुछ देर आंखों को और शरीर को हमें आराम देने की जरूरत है। भोजन के समय और परिवार के साथ बैठते समय मोबाइल का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है।
1: जी
0: ये
1: हाँ।
0: कुछ ऐसे सामान्य आदत हैं जिसके माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मोबाइल तकनीक का एक अद्भुत साधन है। ये ज्ञान, संपर्क और सुविधाओं का विशाल संसार हमारे हाथों तक पहुंचाता है, लेकिन हर सुविधा तभी लाभदायक होती है मनीषा, जब उसका उपयोग संतुलित तरीके से किया जाए। समस्या मोबाइल में नहीं बल्कि उसके अनियंत्रित उपयोग में है। आज आवश्यकता
1: हाँ।
0: इस बात की है श्रोता साथियों कि हम तकनीक के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। यदि हम अपने बच्चों को खुला आकाश, खेल का मैदान, परिवार का साथ और किताबों की दुनिया देंगे तो उसका विकास अधिक संतुलित होगा। यदि हम स्वयं भी स्क्रीन और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति तभी बेहतर होगी। याद
1: हाँ।
0: रखिए कि जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर किसी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद वास्तविक दुनिया में है। इसलिए तकनीक का उपयोग करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य, परिवार और खुशियों की कीमत पर नहीं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगी कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम आधुनिक जीवन की आवश्यकता बन चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आंखों

0: पल से ज्यादा कीमती है। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, जीवन का स्थान लेने के लिए नहीं। जिसे सकारात्मक सोच के साथ अपने स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें, एक स्वस्थ संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन कर लें एक और गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।

0: करना।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुंद हूँ था का? अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुंद, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हम जब भी हाजिर होते हैं तो हम आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। और जैसा कि जो सपनों की उड़ान कार्यक्रम है वो हमारे सपनों को पंख देने वाला कार्यक्रम है साथियों, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मैं बातचीत करने वाली हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और कई लोग जो है वो थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि यार ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है आपको बताऊं तो जिस विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूं वो हमारे सपनों की हकीकत है, और वो चीज हमें भीड़ से भी अलग बनाती है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूं आज के इस कार्यक्रम में अनुशासन को लेकर। साथियों, अनुशासन क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग हमेशा टाइम पर कैसे रहते हैं, कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य के करीब कैसे पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है श्रोता साथियों इन सभी बातों में, और वो है अनुशासन। दोस्तों, अनुशासन का मतलब क्या है? खुद से एक वादा। और आज के हम युवा क्या चाहते हैं? जल्दी सफलता, बिना मेहनत रिजल्ट। लेकिन श्रोता साथियों, सच्चाई तो ये है कि सफलता का मतलब होता है रोज का छोटा छोटा अनुशासन। तो आज के इस कार्यक्रम में साथियों, इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए पहले मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, गीत संगीत भी कार्यक्रम में शुरू हो चुके हैं और गीत से पहले विषय तो मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया कि आज हम बात कर रहे हैं अनुशासन को लेकर। तो दोस्तों, अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को सजा दें और न ही इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी ही छोड़ दें, बल्कि अनुशासन का असली मतलब होता है साथियों खुद से किया हुआ एक वादा जो कि निभाना ही है। साथियों, जब आप खुद से ये कहते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और अगर आप सच में उठ जाते हैं तो वही अनुशासन है। जब आप खुद से ये कहते हैं साथियों कि आज मोबाइल में कम चलाऊंगा या चलाऊंगी, इसके विपरीत में पढ़ाई करूंगी या करूंगा, और आप सच में ऐसा करते हैं तो वो है श्रोता साथियों अनुशासन। यानी कि कहने का मतलब यही है कि मन में ऐसा ठान लेना और उस पर खरे उतरना ही अनुशासन है। साथियों, हम देखते हैं साथियों कि आज के हमारे युवाओं को क्या लगता है कि उनके सामने समस्याएं क्या हैं? मोटिवेशन की कमी, टाइम की कमी और संसाधनों की कमी। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी कमी है अनुशासन की कमी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, जानकारी भी है, लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम शुरू तो करते हैं लेकिन नियमित नहीं रहते। श्रोता साथियों, तो कह सकते हैं कि अनुशासन को हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी बात है कि टैलेंट जो है वो हमें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन अनुशासन ही हमें जीत दिलाएगा। मान लीजिए साथियों कि दो लोग हैं, एक जो है वो रोज मेहनत करता है और दूसरा कभी कभी। तो श्रोता साथियों, प्रश्न ये है कि जीत किसकी होगी? साफ है, जो नियमित रूप से मेहनत कर रहा है उसकी। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा भी जाता है कि कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि अनुशासन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है, ये आपको श्रोता साथियों फोकस करना सिखाता है और ये आपको अंदर से आत्मविश्वास भी देता है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों खुद पर भरोसा करना भी सिखाता है, क्योंकि दोस्तों जब हम बार बार खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये श्रोता साथियों सबसे बड़ी बात है। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें जारी रहेंगी, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है अनुशासन को लेकर, और गीत से पहले हम जैसा कि जान पाए थे कि अनुशासन कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। यही अगर बात करें तो अक्सर लोग ये सोचते हैं साथियों कि जब मेरा मन करेगा तब मैं काम करूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि मन कभी नहीं करेगा, मन हमेशा आराम ही चाहता है। इसलिए सफल लोग मन से नहीं दोस्तों अनुशासन से चलते हैं। अब साथियों सवाल ये है कि अनुशासन आएगा कैसे? तो कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आपको छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करनी है साथियों। रोज आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है, एक ही समय पर काम करना है श्रोता साथियों, यानी कि हर काम का एक समय होता है जो आपको ही सेट करना होगा कि आपको उस काम को किस समय करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को बहाने देना बंद कीजिए साथियों, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पर यही कर देते हैं कि हम खुद से ये कहते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं इस काम को बाद में कर लूंगा, या फिर ये काम अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे पहले कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है वो हमें पहले करना है। हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करना है श्रोता साथियों, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क में बिलीव करेंगे दोस्तों तो देखते हैं कि आप मेहनत ही करते रह जाएंगे। इसलिए आप मेहनत करें, लेकिन स्मार्ट वर्क में मेहनत करें श्रोता साथियों। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर दोस्तों, कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। हमें नियमित बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना हमने बनाई है उसमें नियमित रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि अनुशासन अपने आप ही आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है श्रोता साथियों, ये आपकी आजादी है। क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने सपनों के मालिक खुद बनते हैं, आप अपनी जिंदगी खुद के हाथों में कंट्रोल कर पाते हैं। वरना श्रोता साथियों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको खुद ही ये पता नहीं चलेगा कि कब आपको जिंदगी खुद कंट्रोल करने लग जाएगी। तो आप अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको अनुशासन को तो अपनी जिंदगी में अपनाना होगा ही श्रोता साथियों। ऐसे में आप हमेशा याद रखें कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टैलेंट जो है वो हमें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचा सकता है। दोस्तों ऐसे में आज एक छोटा सा फैसला आप खुद से लें, मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनने की कोशिश करूंगा या करूंगी, ना किसी से तुलना करूंगी, ना किसी से जलन करेंगे,

बस खुद से एक वादा करेंगे कि मैं खुद में सबसे अच्छा वर्जन बनूंगा। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो हमारा जीवन है वो एक माटी के समान है। इस जीवन को आप जैसा आकार देना चाहेंगे ये वैसा ही आपके साथ रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें मन के भरोसे नहीं रहना है कि मेरा मन जब करेगा तभी मैं काम करूंगा। क्योंकि मन तो हमारा श्रोता साथियों जैसा कि पहले भी बताया कि कभी नहीं करेगा और एक सही समय भी कभी नहीं आएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुद को सफल बनाने के लिए अनुशासन को अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि अनुशासन जो है वो एक ऐसा परफेक्ट ऐसा विकल्प है श्रोता साथियों जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसे में दोस्तों हमेशा याद रखिए कि सपने हमेशा बड़े रखिए लेकिन उन्हें पाने के लिए कदम छोटे छोटे रखिए। अपने समय की कदर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण श्रोता साथियों बहाने करना छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब मन नहीं कर रहा हो किसी कार्य को करने का तब भी उस कार्य को करना अनुशासन कहलाता है। इसलिए जो सफल और असफल में फर्क करे वही अनुशासन है श्रोता साथियों। इन्हीं बातों के साथ अब जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है तो श्रोता साथियों आज के लिए बस इतना ही। क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान। जैसा कि आज की इस उड़ान में हमने जाना कि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं होता, बल्कि उनको पूरा करने के लिए हर दिन हमें खुद से किया गया एक छोटा सा वादा भी निभाना पड़ता है, और वही वादा है अनुशासन। याद रखिए साथियों, जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, उस वक्त आप जो फैसले लेते हैं वही आपका भविष्य बनाते हैं। अनुशासन वही है जब आप मन नहीं है के बावजूद भी अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, आज बस एक छोटा सा वादा खुद से करिए, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा या करूंगी, चाहे हालात जैसे भी हो। क्योंकि दोस्तों, सपनों की असली उड़ान पंखों से नहीं अनुशासन से होती है। इसी बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। फिर मिलेंगे साथियों एक नए विचार, एक नई ऊर्जा और एक नई उड़ान के साथ में। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दीजिए श्रोता साथियों, अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। फिर मुलाकात होगी एक नए विचार, एक नई ऊर्जा और एक नई उड़ान के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन को नई ऊर्जा, नई सोच और नई खुशियाँ देता है।
0: जी हाँ,
1: उस विषय का नाम है घूमने फिरने का महत्व। जी हाँ श्रोता साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग घर, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच इतने व्यस्त हो जाते हैं मनीषा कि खुद के लिए समय ही निकालना भूल जाते हैं। सुबह से शाम तक एक ही दिनचर्या, एक ही वातावरण और एक जैसी गतिविधियां जीवन को नीरस बना देती है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में घूमना फिरना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आज हम यही जानेंगे घूमना फिरना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारे बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं घूमने फिरने के महत्व के बारे में।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। जीवन में आनंद, ताजगी और नए अनुभवों का भी विशेष महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: घूमना फिरना एक ऐसी गतिविधि है साथियों, जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाती है। जब हम अपने दैनिक जीवन की व्यस्तता से कुछ समय निकालकर नए स्थानों पर जाते हैं तो हमें नई ऊर्जा, नया ज्ञान और नई प्रेरणा प्राप्त होती है। यही कारण है श्रोता साथियों कि प्राचीन समय से ही यात्रा को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है।
1: बिल्कुल मनीषा, मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु होता है। वह नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना और नए अनुभव प्राप्त करना चाहता है। जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो हमारा मन उत्साहित होता है, नई चीजें देखने और समझने का अवसर मिलता है। श्रोता साथियों, घूमने से जीवन में ताजगी आती है, यह हमारे मन को तनाव और चिंता से दूर ले जाता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन जब हम प्रकृति के बीच या किसी नए वातावरण में समय बिताते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होने लगती है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे कि आज तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसका एक कारण यह भी है मनीषा कि लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। घूमने फिरने से मन को आराम मिलता है। जब हम पहाड़ों, जंगल, नदियों, झीलों और किसी शांत स्थान पर जाते हैं तो मन को शांति का अनुभव होता है। प्रकृति के बीच बिताया गया समय मानसिक थकान को कम करता है, इससे मन प्रसन्न रहता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं मनीषा कि समय समय पर वातावरण बदलना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के आधुनिक युग में लोगों का जीवन अत्यंत व्यस्त हो गया है। पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण लोग तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में श्रोता साथियों, घूमना फिरना न केवल मनोरंजन का साधन ही बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का भी एक प्रभावी उपाय है।
1: बिल्कुल,
0: यात्रा हमें प्रकृति के करीब ले जाती है साथियों और जीवन के दृष्टिकोण को देखने की प्रेरणा देती है। हम देखते हैं कि घूमने फिरने का अर्थ श्रोता साथियों अपने सामान्य निवास से बाहर निकलकर अन्य स्थानों की यात्रा करना है, वहाँ की संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन शैली को समझना है। श्रोता साथियों, ये यात्रा छोटी या बड़ी हो सकती है। कोई व्यक्ति अपने आसपास के दर्शनीय स्थलों की सैर करता है या किसी दूसरे राज्य या किसी देश में जाकर यात्रा करता है। श्रोता साथियों, यात्रा केवल स्थान बदलने का नाम नहीं है बल्कि यह नए अनुभवों को प्राप्त करने और ज्ञान को बढ़ाने का माध्यम भी है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनकी भाषा, खान पान और संस्कृति को समझते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारा अनुभव का दृष्टिकोण है वो भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल मनीषा, घूमना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि शरीर के लिए भी अच्छा है।
0: जी हाँ,
1: जब हम यात्रा करते हैं तो पैदल चलते हैं, नई जगहों का भ्रमण करते हैं और सामान्य दिनों की तुलना में अधिक सक्रिय रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे शरीर की अच्छी कसरत हो जाती है। विशेष रूप से प्राकृतिक स्थानों पर घूमना फेफड़ों को शुद्ध हवा प्रदान करता है, इससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। आज जब अधिकांश लोग मनीषा मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के सामने घंटों बिताते हैं तब घूमना फिरना शरीर को सक्रिय रखने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि किताबों से हमें जानकारी मिलती है लेकिन वास्तविक अनुभव जो है वो यात्रा से ही प्राप्त होता है।
0: जी हाँ,
1: जब हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, खान पान, भाषा, पहनावा, जीवन शैली को करीबी से देखते हैं।
0: जी हाँ,
1: इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसा कि आपने भी बताया था। कई बार छोटी यात्रा भी हमें जीवन में ऐसे सबक सिखा देती है मनीषा जो वर्षों की पढ़ाई से नहीं मिल पाते। यात्रा हमें सिखाती है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हर व्यक्ति की सोच, परिस्थितियां और जीवन शैली अलग हो सकती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि घूमने फिरने का सबसे बड़ा लाभ ही वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार एक ही वातावरण में रहने से व्यक्ति ऊब और तनाव और चिंता का अनुभव करने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: यात्रा इस एकरूपता को तोड़ती है साथियों और हमारे मन को ताजगी प्रदान करती है। साथ ही श्रोता साथियों, जब हम प्राकृतिक स्थानों जैसे कि पहाड़ों, नदियों, झरनों और जंगलों में जाते हैं तो हमारा मन है वो शांत होता है।
1: बिल्कुल,
0: प्राकृतिक सौंदर्य है वो तनाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। श्रोता साथियों, यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे हम देखते हैं कि उसका मानसिक संतुलन है वो बेहतर होता है। अंजलि जी, हम कहना चाहेंगे कि आज के समय में अवसाद, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं वो तेजी से बढ़ रही हैं।
1: जी जी,
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों, परिवार, मित्रों के साथ यात्रा करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ मनीषा, बच्चों के लिए घूमना फिरना सीखने का एक शानदार माध्यम हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: यदि बच्चे ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, प्राकृतिक उद्यानों और ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं तो उन्हें पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: यात्रा बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाती है, उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करती है और उन्हें आत्मविश्वासी बनाती है। बच्चे नए लोगों से मिलना, नए वातावरण में खुद को ढालना और समस्याओं का समाधान करना सीख पाते हैं।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। घूमने फिरने से परिवार के सदस्य को साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। यात्रा के दौरान लोग बातचीत करते हैं, हंसते हैं, अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। यही कारण है कि परिवार के साथ की गई यात्रा जीवन भर की यादें बन जाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से घूमने फिरने के महत्व को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जंगल और व्यस्त जीवन के बीच पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और पक्षियों के साथ समय बिताने का अवसर कम मिलता है।
1: जी हाँ,
0: घूमने फिरने के माध्यम से मनीषा हम प्रकृति के करीब आते हैं। हमें यह समझ में आता है कि पर्यावरण का संरक्षण कितना आवश्यक है। प्रकृति के साथ बिता गया समय जो होता है वो मनुष्य को विनम्रत बनाता है और जीवन की वास्तविक सुंदरता का एहसास कराता है।
1: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा हमें देश की वास्तविक तस्वीर दिखाती है। गाँव में रहने वाले लोगों की मेहनत, सादगी, सामुदायिक भावना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कृषि, पशुपालक, जल संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान जैसी अनेक बातें ग्रामीण जीवन से समझी जा सकती हैं। गांवों की यात्रा हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। यात्रा के दौरान व्यक्ति अधिक चलता फिरता है जिससे शरीर सक्रिय रहता है।
0: बिल्कुल,
1: पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेकिंग, प्राकृतिक स्थानों की सैर और विभिन्न गतिविधियां शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। श्रोता साथियों, लगातार बैठकर काम करने की आदत से मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी समस्याएं वो बढ़ जाती है। यात्रा के दौरान होने वाली सारी शारीरिक गतिविधियां इन समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायक होती है। इसके अलावा श्रोता साथियों, खुली हवा में, स्वच्छ वातावरण में और प्राकृतिक दृश्य शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाते हैं।
0: जी जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। कहना चाहेंगे कि घूमना फिरना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है श्रोता साथियों जिम्मेदारी के साथ यात्रा करना। हमें पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, प्लास्टिक और कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाने से बचना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन सुंदर स्थानों का आनंद ले सके। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि घूमना फिरना केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि यह जीवन को समझने की एक प्रक्रिया है। यह हमें नई जगहों से परिचित कराती है, नए अनुभव हमको दिखाती है और हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखते हैं।
1: जी हाँ,
0: तथा हमारी सोच को व्यापक बनाते हैं। यात्राएं हमें सिखाती है मनीषा कि जीवन केवल जिम्मेदारी और काम का नाम नहीं है, जीवन का अर्थ है अनुभवों, सीखो, रिश्तों, यादों में छिपा होता है।
1: जी
0: जब हम अपने परिचित वातावरण से बाहर निकलते हैं तब हम केवल नई जगहों को नहीं देखते श्रोता साथियों बल्कि स्वयं को भी नए रूप में पहचानते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यात्रा को एक चलता फिरता विद्यालय भी कहा जाता है। किताबों में पढ़ी गई बातें यात्रा के दौरान वास्तविक रूप में देखने को और समझने को मिलती हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, धार्मिक स्थानों और सांस्कृतिक केंद्रों की यात्रा है वो हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। श्रोता साथियों, उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी इतिहास की पुस्तक में किसी किले या स्मारक के बारे में पढ़ता है और बाद में उसे वो प्रत्यक्ष रूप से देखता है तो उसका ज्ञान है वो अधिक गहरा होता है और स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार श्रोता साथियों, विभिन्न राज्यों और देशों की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है और जिससे हमारी समझ और सोच का दायरा है वो भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे कि यात्राएं हमें सिखाती है कि जीवन केवल जिम्मेदारी नहीं है, घूमना हमें बताता है कि दुनिया विविधता से भरी हुई है।
1: जी हाँ,
0: कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियां हैं तो कहीं घने जंगल है तो कहीं मेहनतकश लोगों की प्रेरक कहानियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: हर यात्रा हमें कुछ नया सिखाती है, हमारे व्यक्तित्व को समृद्ध बनाती है। इसलिए जीवन की व्यवस्थाओं के बीच श्रोता साथियों थोड़ा सा समय हमें अपने लिए निकालना होगा।
1: जी हाँ,
0: परिवार, मित्रों या अकेले ही सही, समय समय पर आसपास की जगहों पर हमें जाना होगा, प्रकृति से जुड़ना होगा और लोगों से मिलना होगा और नए अनुभवों को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। याद रखिए श्रोता साथियों कि यात्रा का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं कि हम कितना दूर गए, यह है कि हम कितनी नई सोच लेकर वापस लौटे।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत है जो विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य की भाषा, पहनावा, भोजन और संस्कृति अलग अलग है।
0: बिल्कुल,
1: यात्रा के माध्यम से हमें इन गतिविधियों को समझने का अवसर मिलता है। जब हम विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे श्रोता साथियों हमारे मन में जो संस्कृति है उसके प्रति सम्मान की भावनाएं विकसित होती है। यात्रा हमें सिखाती है कि विभिन्नता के बावजूद भी सभी के बीच एक दूसरे से सभी कैसे जुड़े हुए हैं और सभी के बीच कैसे प्यार बना हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि आज के व्यस्त जीवन शैली में परिवार के सदस्यों है वो एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। अक्सर हम देखते हैं कि इससे तनाव बढ़ता जाता है। यात्रा यात्रा परिवार को साथ लाने और रिश्तों को मजबूत करने का एक अच्छा माध्यम है। जब परिवार के सभी सदस्य साथ घूमने जाते हैं अंजलि जी, तो वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं और एक नए अनुभवों को साझा करते हैं। इससे हम देखते हैं कि पारिवारिक संबंध में मधुरता आती है और आपसी समझ ही वो भी बढ़ती है।
0: बिल्कुल।

0: मनीषा, मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को सार्थक बनाने में घूमने फिरने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम अपने रोजमर्रा के वातावरण से बाहर निकलते हैं तब हमें केवल नए स्थान ही नहीं मिलते बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है।
1: जी हाँ।
0: यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल, विविधतापूर्ण और सुंदर है। घूमना फिरना हमें अपने भीतर झांकने का अवसर भी देता है। कई बार हम जीवन की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं श्रोता साथियों कि अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को समझ का हमें समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम कुछ समय के लिए नए माहौल में जाते हैं तब मन शांत होता है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि अनेक लोग किसी यात्रा से लौटने के बाद स्वयं को पहले से अधिक आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मित्रों के साथ की गई यात्रा जीवन भर याद रहने वाली यादें बनती हैं। यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियां अनुभवों के साथ मिलकर संभालने से हमारी मित्रता है वो अधिक मजबूत होती है।
0: बिल्कुल।
1: समूह में यात्रा करने से श्रोता साथियों मित्रता, सहयोग, सामंजस्य और टीमवर्क की भावना है वो विकसित होती है। मित्रों के साथ बिताए गए आनंददायक क्षण जीवन में खुशी और सकारात्मकता हमारे लाते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे घूमने फिरने के महत्व को लेकर, इसमें हम देखते हैं कि यात्रा व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। अंजलि जी, नए स्थानों पर जाना, नए लोगों से मिलना और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना व्यक्ति को अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। विशेष रूप से श्रोता साथियों, अकेले यात्रा करने वाले लोगों में निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास का विकास कम होता है। वे समस्याओं का समाधान स्वयं करना सीखते हैं साथियों, और जीवन की चुनौतियों को सामना करना भी अधिक सक्षम तरीके से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, घूमना फिरना हमें अपने भीतर झांकने का अवसर भी देता है। कई बार हम जीवन की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं श्रोता साथियों कि अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को समझने का समय ही नहीं निकाल पाते।
0: जी हाँ।
1: लेकिन जब हम कुछ समय के लिए नए माहौल में जाते हैं तब मन शांत होता है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि अनेक लोग किसी यात्रा से लौटने के बाद स्वयं को पहले से अधिक आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करते हैं। यात्रा हमें सहनशीलता, धैर्य, अनुकूल की कला भी सिखाती है। अलग अलग परिस्थितियों, लोगों और संस्कृतियों से मिलकर हम समझते हैं मनीषा कि हर व्यक्ति का जीवन संघर्षों और अनुभवों से बना होता है।
0: जी हाँ।
1: इससे हमारे भीतर दूसरों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ती है। हम केवल अपने बारे में नहीं बल्कि समाज और दुनिया के बारे में भी व्यापक दृष्टि विकसित कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: आज जब तकनीक ने दुनिया को हमारी हथेली में समेट दिया, तब भी किसी स्थान को अपनी आंखों से देखना, वहाँ की हवा को महसूस करना, लोगों से मिलना और उस वातावरण को जीना एक अलग ही अनुभव है। कोई भी तस्वीर, वीडियो या किताब उस अनुभव की पूरी जगह नहीं ले सकती। वास्तविक यात्रा हमें जीवन के उन रंगों से परिचित कराती है मनीषा, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यात्रा हमारे मस्तिष्क को नए अनुभव प्रदान करते हैं। नए स्थान, नई संस्कृति और नए लोग हमारी सोच को प्रभावित करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और रचनात्मकता है वो भी बढ़ती है। लेखन, कलाकार, फोटोग्राफर और वैज्ञानिक अक्सर नई प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं यात्रा के दौरान। श्रोता साथियों, नए अनुभव उन्हें नए विचार और नई दृष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए श्रोता साथियों, यात्रा को रचनात्मकता का स्रोत हमें मानना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें श्रोता साथियों से कि घूमने फिरने को केवल शौक या विलासिता न समझें, इससे अपने मानसिक संतुलन, पारिवारिक खुशहाली, सामाजिक समझ और व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माने। चाहे यात्रा छोटी हो या बड़ी, पास की हो या दूर की, हर यात्रा अपने साथ कोई न कोई सीख, प्रेरणा और याद अवश्य लेकर आती है। हम अपने जीवन में ऐसे अवसर बनाएं जहां हम प्रकृति से जुड़ सकें, नए अनुभव प्राप्त कर सकें, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि जीवन के अंत में लोग यह नहीं याद रखते कि उन्होंने कितने दिन केवल काम किया, बल्कि उन पलों को याद रखते हैं जिन्होंने उनके दिल, सोच और सोच को समृद्ध बनाया।
0: बिल्कुल।
1: और ऐसे अनमोल पलों को संजोने का सबसे सुंदर माध्यम है घूमना, देखना, सीखना और जीवन को खुले मन से जीना।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि घूमने फिरने का महत्व केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: पर्यटन उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, भोजन और पर्यटन से जुड़े व्यवसाय हैं, उनको भी बढ़ावा मिलता है। श्रोता साथियों, जब लोग विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं तो वहाँ के स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: इससे हम देखते हैं कि आर्थिक विकास है वो भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल मनीषा, एक कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि ये एक यात्रा जिसने सोच बदल दी। श्रोता साथियों, एक छोटे से गाँव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत मेहनती थी। सुबह से लेकर रात तक घर के काम, खेत काम और परिवार की जिम्मेदारियों में लगी रहती थी। उसके पास अपने लिए समय नहीं था। गांव के लोग जब कहीं घूमने जाने की बात करते तो वो हमेशा कहती, घूमने फिरने से क्या फायदा।
0: जी
1: समय
0: हाँ।
1: और पैसे की बर्बादी है। राधा की दुनिया उसके घर और गांव तक ही सीमित थी। उसने कभी भी अपने जिले से बाहर कदम नहीं रखा था। उसे लगता था कि जो कुछ जानना है वह सब उसके आसपास ही मौजूद है। एक दिन गांव की महिलाओं के समूह ने पास के एक पहाड़ी क्षेत्र, प्राकृतिक उद्यान की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। सभी महिलाओं ने राधा से चलने को आग्रह किया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी बेटी ने कहा, माँ आप हमेशा दूसरों का ख्याल रखती हैं, एक दिन अपने लिए भी निकालिए। बहुत समझाने के बाद राधा तैयार हो गई। यात्रा वाले दिन सुबह सुबह बस रवाना हुई। रास्ते में हरे भरे खेत, छोटी छोटी नदियां, पहाड़, जंगल दिखाई दे रहे थे। राधा खिड़की से बाहर देखती रही। उसने महसूस किया कि दुनिया उसके गांव से कहीं बड़ी और खूबसूरत है।
0: बिल्कुल।
1: कुछ घंटों बाद सभी लोग पहाड़ी क्षेत्र पहुंचे। वहाँ चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और सुंदर बना रही थी। राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने वर्षों बाद अपने मन को इतना शांत महसूस किया था। उसे लगा जैसे उसके भीतर जमा सारी थकान और धीरे धीरे दूर हो रही है। घूमते घूमते वह एक वृद्ध महिला से मिली जो स्थानीय गांव में रहती थी। बातचीत के दौरान उस महिला ने बताया कि कैसे उसके गांव के लोगों ने मिलकर वर्षा जल संरक्षण किया, पेड़ लगाया और पूरे क्षेत्र को हरा भरा बना दिया। राधा को यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि यदि उनके गाँव में भी ऐसा काम किया जाए तो पानी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: यात्रा के दौरान उसने छोटे हस्तशिल्प केंद्र का भी दौरा किया। वहाँ महिलाएं अपने हाथों से सुंदर वस्तुएं बनाकर बेच रही थी। उससे बातचीत करके राधा को पता चला कि वे घर के कामों के साथ साथ अपनी आय भी बढ़ा रही है। ये देखकर राधा को नई प्रेरणा मिली। उसे महसूस हुआ कि सीखने के लिए केवल स्कूल या किताबों की जरूरत नहीं होती, बल्कि नए लोगों से मिलना और नए स्थानों को देखना भी बहुत कुछ सिखाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: शाम को जब सभी लोग वापस लौटने लगे तो राधा का मन वहां से जाने का नहीं कर रहा था। वह सोच रही थी कि एक ही दिन में उसने इतना कुछ नया सीखा और देखा। गांव लौटने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह पहले की तरह हर समय तनाव में नहीं रहती थी। उससे महिलाओं के समूह के साथ मिलकर गांव में सफाई अभियान शुरू किया।
0: जी हाँ।
1: वर्षा जल संरक्षण के बारे में चर्चा की और हस्तशिल्प सीखने में रुचि दिखाई। कुछ महीनों बाद गाँव में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। लोग राधा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी बेटी ने मुस्कुराकर पूछा, माँ अब बताइए घूमने फिरने से कोई फायदा होता है या नहीं। राधा हंस पड़ी। उसने कहा, पहले मैं सोचती थी कि यात्रा केवल मनोरंजन है, लेकिन अब समझ में आया कि यात्रा इंसान की आंखें ही नहीं उनकी सोच भी खोल देती है। हमें नई जगहों से ज्यादा नए विचार देती है।
0: जी
1: उस दिन राधा ने महसूस किया कि कभी कभी घर से कुछ दूर जाना जीवन को बहुत आगे बढ़ने की शुरुआत बन सकता है। ये कहानी हमें सीख देती है कि घूमना फिरना केवल समय बिताने का साधन नहीं है श्रोता साथियों, यह हमें नई बातें सीखने, नए लोगों को समझने, प्रकृति से जुड़ने और जीवन को व्यापक दृष्टि से देखने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल।
1: हर यात्रा हमें कुछ न कुछ ऐसा सिखाती है मनीषा, जो हमारे व्यक्तित्व और सोच को बेहतर बनाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बातें इस विषय को लेकर चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कहना चाहेंगे कि जीवन केवल एक स्थान पर रहकर दिन गुजार देने का नाम नहीं, बल्कि यह निरंतर सीखने, समझने, अनुभवों को संजोने की प्रक्रिया है। घूमना फिरना इस प्रक्रिया को समृद्ध बनाता है। यह हमें हमारी सीमित सोच की दीवारों से बाहर निकाल कर दुनिया की विशालता से परिचित कराता है।
1: जी हाँ।
0: जब हम नए स्थानों, नए लोगों और नई परिस्थितियों से रूबरू होते हैं मनीषा, तब हमें यह एहसास होता है कि हर क्षेत्र, हर समाज और हर व्यक्ति के पास हमें सिखाने के लिए कुछ न कुछ मूल्यवान अवश्य होता है। यात्राएं हमें केवल बाहर की दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी संभावनाओं से भी परिचित कराती हैं।
1: बिल्कुल।
0: कई बार किसी शांत पहाड़ी पर बिताया गया कुछ समय किसी गाँव की सरल जीवन शैली या किसी अनजान व्यक्ति से हुई छोटी सी बात हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। ऐसे अनुभव हमें अधिक संवेदनशील, समझदार और परिपक्व बनाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यात्रा राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करने का माध्यम है। जब लोग विभिन्न राज्यों की यात्रा करते हैं साथियों, तो वे वहाँ की संस्कृति और लोगों को समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इससे क्षेत्रीय भेदभाव कम होता है और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावनाओं पर बल मिलता है। यात्रा लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल। घूमने फिरने का एक बड़ा लाभ यह है कि यह जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
1: जी हाँ।
0: आज के समय में लोग उपलब्धियों के पीछे दौड़ते दौड़ते स्वयं को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, यात्रा हमें रुककर जीवन को महसूस करने का अवसर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि खुशी केवल मंजिल में नहीं बल्कि रास्तों में छिपी होती है। जब हम अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैली को देखते हैं मनीषा, तब हमारे भीतर सम्मान और स्वीकारिता की भावना विकसित होती है।
1: जी बिल्कुल।
0: हम यह समझने लगते हैं कि विभिन्नता कोई दूरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। यही समझ समाज में भाईचारा, सहयोग और सद्भाव को मजबूत बनाती है। प्रकृति की गोद में बिताया गया समय हमें पर्यावरण के महत्व का एहसास कराता है। ऊंचे पहाड़, बहती नदियां, घने जंगल और खुले आसमान हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। यात्रा हमें पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का भी बोध कराती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जीवन की सबसे सुंदर पूंजी धन या वस्तुएं नहीं बल्कि वे अनुभव हैं जो हमारे मन में हमेशा जीवित रहते हैं। वर्षों बाद भी लोग किसी यात्रा के दौरान देखे गए दृश्य, मिले हुए लोगों और महसूस की गई खुशियों को याद रखते हैं। यही यादें जीवन को रंगीन और अर्थपूर्ण बनाती है।
1: जी हाँ।
0: हम अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय ऐसे अनुभव के लिए भी निकालें जो हमें बेहतर इंसान बना सके। नई जगहों को देखने की उत्सुकता बनाए रखें, सीखने की भावनाओं को जीवित रखें, दुनिया को खुले मन से जानने का प्रयास करें, क्योंकि जो व्यक्ति चलते रहना, देखना और सीखना नहीं छोड़ता, उसका जीवन कभी नहीं ठहरता। वह हर नए अनुभव के साथ अधिक समृद्ध, जागरूक और जीवन के प्रति कृतज्ञ बनता जाता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि घूमना फिरना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और लाभदायक है। यह केवल मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है साथियों, बल्कि ज्ञान, अनुभव, स्वास्थ्य और व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। यात्रा व्यक्ति की नई नई जगहों को देखने का मौका देती है, विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं को समझाती है और साथ ही अपने जीवन के अनुभवों को समृद्ध बनाती है। इससे उनके विचार व्यापकता आती है साथियों, वही दुनिया के अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि घूमने फिरने से मानसिक तनाव दूर होता है, मन प्रसन्न होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही शरीर को स्वस्थ और बेहतर बनाकर रखती है। यात्रा के दौरान मिलने वाले नए अनुभव व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटक देश अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के अवसर को बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक सद्भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में यात्रा का महत्व और भी अंजलि जी बढ़ जाता है। यह मनुष्य को प्रकृति के निकट ले जाती है, जीवन की एकसरता से दूर रखती है और उसे नई प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए श्रोता साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में समय समय पर यात्रा अवश्य करनी चाहिए। वास्तव में घूमना फिरना जीवन को अधिक सुखद, ज्ञानवर्धक, सक्रिय और आनंदमय बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। यही कारण है अंजलि जी कि यात्रा को जीवन का एक अमूल्य अनुभव भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में भी योगदान देती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पाए। आशा आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंढरपुर से। फिल्म का नाम है दिल, गीत के बोल हैं हम प्यार करने वाले। इस गीत की फरमाइश करता है सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, प्रशांत सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सुप्रील जी धाड़ी। इस गीत के अनुरोध करता है जनकपुरी सहारनपुरा से जॉन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलेज डिकिस्ट्रो। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, पूजा परिहार जी और ईशान जी चिपा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरा मणि वर्मा, पारिश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत की बोल है हम प्यार करने वाले। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है सुनीता सिंधी, यशरा सिंधी, ऋषि घोड़गी, प्रशांत सिंधी जी, कृष्णा घोड़गी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, रंजीत और गुरप्रीत, लवप्रीत कौर और कमरजीत। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं शिवाजी नगर देशमुख से राजेश खोबरखेड़ी, शिवसागर खोबरखेड़ी, इंद्राताई खोबरखेड़ी, चकुलीताई खोबरखेड़ी। बुल्ढाणा से जुड़ना चाह रहे दीपाली रामधाड़ी, स्वराज रामधाड़ी। अमरावती से जुड़ना चाह रहे सुनेना पवन भोड़ी, तनुजा पवन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सताना एमपी से जुड़ रहे हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही जी मलिक। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पलारी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और शबीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा और ईशान जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रसाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा जी। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता जी और शबीर कुमार जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे गोरी है कलैया। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है दादा, गीत के बोल हैं दिल के टुकड़े टुकड़े करके। इस गीत की फरमाइश करता है हरमिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मलियाना सरधाना मेरठ से। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र जी शाह और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से मनोहर चुग, मेठी और गुड्डी जी। सहारनपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं ओम प्रकाश चौहान और सोनाली जी चौहान और खट्टी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूभाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी जी धाकड़ और भी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं दिल के टुकड़े टुकड़े करके। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ मदनपुर से। फिल्म का नाम है भीगी पल के, गीत की बोल ही जन्म जन्म का साथ ही तुम्हारा हमारा। इस गीत की फरमाइश करता है श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, श्री रामपुर सी, डी अशोक कुम्भार, रविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावली से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनोनी, करिश्मा सोनोनी, अविका सोनोनी, शाइसा जी सोनोनी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है कोका बलाई सी, उत्तम सिंह जंगेल, मोरजी जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार, आरुषि जंगेल और नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ना चाह रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि ओशिका जी जंगेल, आदित्य और अंजलि जी जंगेल। बोरखेड़ा पित्रामल से जुड़ रहे हैं विनोद मोणत, नेहा जैन, दीपक मय मोणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश्जी मोणत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गाजियाबाद से शिषपाल जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुष श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आयुषी श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित और सोमो, मानस जी राज। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जन्म जन्म का साथ ही तुम्हारा हमारा। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और मोहम्मद रफी जी ने। फिल्म का नाम है भीगी पलके। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथ ही मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सेंटर पांच कुंटी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है दो दोस्त, गीत की बोल ही ये रेशमी जुल्फे सवर शरबती आंखें। फिल्म का नाम है दो रास्ते। इस गीत की फरमाइश करता है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी करवी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू टप्पू जी। दादरीगढ़ भवानी से जुड़ना चाह रहे हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनहाल जी मेहरा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से समेत मशरूम, साइना हसन, आकसा, आफिया, नाजिया, इफ्राहिम जी, सदाम जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजुड़वारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फेसाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुद्रमेश शाहू। बिहार से जुड़ना चाह रहे डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अली भा, दानिश जी अंसारी। बक्सर से जुड़ रहे श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानूर से। फिल्म का नाम है मोहब्बती, गीत के बोल हैं चलते चलते। इस गीत की फरमाइश करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेहराब जहां जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राजी यादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, सरवत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशी शेख, नाजिया नाशी, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रही हैं जुमेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जी मुजावर, जुमेद मुजावर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती जी बघेल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, उस्मानाज अंसारी, शबनम बानू। जेल रोड बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खा, फातमा नाज जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अलीबा जी। लाहौरा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं प्रभा रानी चमोरिया। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चलते चलते। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हम हाजिर हो जाते हैं प्रातः 11 से 1 बजे तक, और इस कार्यक्रम में आप शामिल होने के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। आप इस नंबर के ज़रिए आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं और सुन सकते हैं आप अपने फरमाइश गीतों को वागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला चल ही रहा था, इससे पहले हमारी रेडियो साथी मनीषा आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। फरमाइशों का सिलसिला चल रहा है, अगली फरमाइश हमारे पास आई है, गीत के बोल हैं, ये दुनिया नहीं है जागीर किसी की। फिल्म का नाम है चौकीदार। आवाज थी इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने। सुनाचार इस गीत को कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल। फरमाइश करता है, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा, रेशमा सुनीता। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की।

साथियों, अभी हमने सुना बहुत ही प्यारा सा गीत, गीत के बोल थे ये दुनिया नहीं जाकर किसी की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है गदर, गीत के बोल है ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह। सुनना चाह रहे इस गीत को खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पियूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भावी का सिक्का। अनुरोध करता है श्रोता साथियों इस गीत के सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश शिखा और प्रीतेश, ये हैं हरगोविंद नगर नवनेश्वर से। श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाव बिड़वे, श्रवण बिड़वे, चिरंजित अनिकेत सोनवने, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। यह जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनेटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सारे सदस्य। रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन राज, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा। खंडवा से राधिका, अनिता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से हैं निशा डोमिन, हुमा डोमिन, जाह्नवी डोमिन। चंद्रनगर सरहानपुर से हैं देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं ऊर्जा काले कावा तेरे।

0: घर
1: श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत के बोल है, वेरी आवे किया क्या कसूर मैंने। सुना चाह रहे इस गीत को एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा, जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। अस्तुपुर जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आजाद इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। श्रोता साथियों, फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दुवंशी खेड़ा अनुरोध किया है इस गीत के लिए। अनारकली बाजार गजगराउस पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सच्चा से पाठक, विनोद पुरी, धनोरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, ग्राम पिपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, वे रियावे किया क्या कसूर मैंने।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत की बोल है धक धक करने लगा, फिल्म का नाम है बेटा। सुनना चाह रहे इस गीत को प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पाटन से डॉक्टर सुरेश जादव, अनिता जादव, आरती पूजा, प्रसाद जादव, सोनल जादव, बेबी सिया जादव, जालना शहर से सोमनाथ जादव, गीता जादव, ओम जादव, सुभाष जादव, चंदन जादव, एकनाथ जादव, संगीता जादव। अनुरोध करता है इस गीत के ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, दापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है अंदाज, गीत की बोल है किसी से तुम प्यार करो। सुना जा रहे इस गीत को भवानी नगर पैठन से अरुण धोगड़े, आरती धोगड़े, भाऊ साहब धोगड़े, गंगा साहिब धोगड़े, हर्षवर्धन अशोक धोगड़े, राशि कार्तिक पड़े धोंगड़े परिवार के सारे सदस्य। गांव जाखुत राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। मदरसा गेट भावपुर मरिया और जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजरत अबसुम राय, रायपुर अनी जिला बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरन अंसारी, आफिया परवीन, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्जुन अताई गुड़ाने, हिरावन शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुड़ाने, पोटियाकला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं किसी से तुम प्यार करो।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गीत के बोल हैं थारे वास्ते रे ढोला। सुना जा रहे इस गीत को बिहार स्टेट डुमराव से राज एसटी अंसारी, नसरीन अंसारी और वलीउल्लाह अंसारी, इंदिरा चौक दहली से अजीम वकार, डोंडी लोहार से प्रभा रानी बेलदार, कुमारी दुर्गा बेलदार और शंकर देव बेलदार, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजिंदर विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, रसीद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आजना अंसारी, मोहम्मद कीफ अंसारी, जिन मंदिर वाली कुरावली से हैं। ये अनुरोध करता है इस गीत के कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। तो आइए दोस्तों, सुन लेते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं थारे वास्ते।

इसी के साथ साथ ही अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं तेरे मेरे बीच में, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। आवाज़ दी इस गीत को लता मंगेशकर जी और एस वी बाल सुब्रमण्यम ने। सुना चाह रहे इस गीत को मित्रनगर बिर शहर महाराष्ट्र से विकास बंसुरे, रेखा बंसुरे, अदिति बंसुरे, वैभव शिंदे हिल स्टेशन से हैं, आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे, विरम गांव गुजरात से बेगम प्रमिला प्रदीप, बेगम हेमा प्रदीप, बुलंदशहर से नरेंद्र कुमार डोम, सरिता मुन्ना, प्रभा मुन्ना, डोली और अंजनी डोम, डोंडी लोहार बालों से सुनील कुमार और आशा देवी। फरमाइश करता है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा और अनामिका शर्मा। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं तेरे मेरे बीच में।

साथियों, अभी हमने सुना गीत के बोल थे तेरे मेरे बीच में, फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल है परदेसी परदेसी। सुनना चाह रहे इस गीत को जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनीचा, पूनम कगनीचा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। सरगुजा मेन पार्ट से हैं प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन और पूरा डोमिन परिवार। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, राधिका देवी, पूजा देवी और मिश्री देवी साहू। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबे राव और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। श्रोताओं, लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी और प्रकाश वीर राजपूत, टोंडी लोहार बालोद से हैं कमलेश जयपुरिया, चंद्रनगर से रजनीश सिंह चौहान, पिंकी और दुर्गा कुमारी, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई से बेगम अनुश्री प्रदीप राजश्री और प्रमिला प्रदीप, रायगढ़ से जानवी डोमिन, पिंकी और दीपा डोमिन, डोंडी लोहार से हैं फर्जी हरिशंकर बेलतरा, फर्जू प्रभा रानी, जेल रोड रायगढ़ से उमा राज, जगदीश राज। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। फरमाइश करता है श्रोता साथियों इस गीत की करेली बरेली से आरिफ हुसैन अंसारी, अलीशान अंसारी, अलजमा अंसारी। पसंद किया है इस गीत को समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वैदही जोशी, बेबी अंशिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती कैवट जी। अनुरोध करता है इस गीत के उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी जी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बनी, आरुषि, शौर्य, दिनेश और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं। छनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामते, धर्मदास वाधवानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं इस गीत को, यही हमारे आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज के शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए, जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: आंकड़ों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।
1: परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा और कशिश हमारे श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है घूमने फिरने और पिकनिक का क्या महत्व है। आज के युवा का जीवन तेज गति, प्रतिस्पर्धा, पढ़ाई, करियर और तकनीक से घिरा हुआ है।
2: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं मनीषा और कशिश की हर दिन नई चुनौतियां सामने आती है। ऐसे में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: केवल पढ़ाई या काम में लगे रहना ही सफलता का मार्ग नहीं बल्कि जीवन में आनंद, ताजगी और अनुभव का होना भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: घूमना फिरना और पिकनिक ऐसी गतिविधियां हैं जो युवाओं को जीवन की भाग दौड़ से कुछ समय निकालकर स्वयं को समझने, प्रकृति के करीब आने और नई ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
2: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि घूमने फिरने का अर्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना नहीं है बल्कि यह नए अनुभव, नई संस्कृतियों और नए विचारों से परिचित होने का माध्यम भी है। जब युवा अपने घर, विद्यालय या कार्यस्थल से बाहर निकलते हैं, किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है। वे दुनिया को एक नए नजरिए से देखना

0: सीखते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें जरूर होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम गीत संगीत के साथ मनोरंजन उन्हें पहले करवाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले गीत के साथ की जाए।
2: बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं घूमने फिरने और पिकनिक का महत्व।
1: बिल्कुल
0: कशिश और जागृति जी, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन अनेक जिम्मेदारियों, कार्यों और चुनौतियों से भरा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम, पढ़ाई, व्यवसाय और घरेलू जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे स्वयं के लिए समय निकालना भी कठिन समझते हैं। लगातार काम करने से शरीर और मन दोनों थक जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में श्रोता साथियों, घूमना फिरना और पिकनिक जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और ताजगी का संचार करती है।
1: बिल्कुल,
0: यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है साथियों, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का भी महत्वपूर्ण साधन है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो केवल पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगिता या फिर जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। बल्कि जागृति जी और मनीषा, जीवन का वास्तविक आनंद तभी है जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को भी समझते।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि आपने बताया कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे जो युवा साथी हैं वे लगातार करियर और डिजिटल दुनिया में ही व्यस्त होते जा रहे हैं। ऐसे में घूमना फिरना और पिकनिक केवल उनके लिए मनोरंजन का साधन नहीं होगा, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन जाएगा।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि घूमने फिरने का मतलब है कि हम नई जगहों पर जाएं,
0: बिल्कुल
1: नए लोगों से मिले, नई संस्कृतियों को जाने और नए अनुभवों से परिचित हुएं।
2: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज के समय में युवाओं के सामने तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। परीक्षा का दबाव हो गया, करियर की चिंता हो गई, भविष्य की अनिश्चितताएं हो गई। कई बार हम देखते हैं मनीषा और कशिश की ये सारी चीजें मानसिक थकान पैदा कर देती है।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे में घूमना फिरना और पिकनिक तनाव कम करने का प्रभावी उपाय साबित होते हैं। प्राकृतिक वातावरण में बिताया गया समय मन को शांति देता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि घूमने फिरने से युवाओं का ज्ञान बढ़ता है, किताबों में पढ़ी गई बातें जब वास्तविक रूप में देखने को मिलती है तो सीखने का अनुभव और भी गहरा हो जाता है।
1: जी हाँ,
2: ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, पहाड़ियों, नदियाँ, सांस्कृतिक केंद्रों की यात्रा युवाओं के ज्ञान को समृद्ध बनाती है।
1: बिल्कुल,
2: केवल जानकारी ही नहीं प्राप्त करते बल्कि अनुभव भी अर्जित करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं घूमना फिरना केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक प्रकार का व्यायाम भी है। यात्रा के दौरान पैदल चलना, पहाड़ चढ़ना, खेलकूद करना और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना शरीर को सक्रिय बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारे शरीर को भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि हमारे शरीर की ऊर्जा है वो भी बढ़ती है, हमारा रक्त संचार है वो अच्छा होता है, मोटापा भी नियंत्रित होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी श्रोता साथियों मजबूत होती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही थकान और आलस्य भी दूर होता है। पिकनिक के दौरान बच्चे और बड़े सभी खेल कूद में भाग लेते हैं साथियों, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि घूमने फिरने का मतलब केवल पर्यटन स्थलों पर जाना नहीं होता साथियों, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने परिचित वातावरण से बाहर निकलकर किसी नई जगह का अनुभव करना।
0: बिल्कुल
1: साथियों, ये किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा भी हो सकती है, किसी पहाड़ी क्षेत्र की सैर भी हो सकती है, या फिर जागृति जी हम किसी गांव का भ्रमण भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा जो पिकनिक होती है वो एक मनोरंजन कार्यक्रम होता है जिसमें हम परिवार, मित्र या सहकर्मी के साथ किसी सुंदर स्थान पर जाकर समय बिताते हैं।
0: जी हाँ,
1: वहाँ जागृति जी हम खेलकूद, भोजन, संगीत, बातचीत और मनोरंजन के माध्यम से आनंद लेते हैं।
0: जी हाँ,
1: देखते हैं कि पिकनिक का उद्देश्य केवल मौज मस्ती करना नहीं होता बल्कि आपसी संबंधों को मजबूत बनाना होता है और मानसिक ताजगी प्राप्त करना भी होता है।
2: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि कशिश और मनीषा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है घूमना फिरना और पिकनिक का क्या महत्व होता है, तो बातें ऐसे ही बनी रहेंगी आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी घूमना फिरना और पिकनिक के महत्व को लेकर।
1: जी,
0: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि घूमने फिरने से युवाओं का ज्ञान भी बढ़ता है। किताबों में पढ़ी गई बातें जब वास्तविक रूप से देखने को मिलती है तो सीखने का अनुभव और भी गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कशिश की ऐतिहासिक स्थलों, जैसे कि हमने पहले बताया था, संग्रहालय, पहाड़ों, नदियों और सांस्कृतिक केंद्रों की यात्रा युवाओं के ज्ञान को समृद्ध बनाती है। और कहा गया है मनीषा की यात्रा सिखाती है सहयोग करना, अनुशासन करना और जिम्मेदारी का योग करना।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि घूमने फिरने से, जैसा कि बता रहे हैं, कि हमारा आत्मविश्वास का विकास होता है। नए स्थानों पर जाना, नए लोगों से मिलना और नई परिस्थितियों का सामना करना व्यक्ति को साहसी बनाता है। साथ ही युवा चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं और उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है।
1: जी हाँ,
0: आत्मविश्वास भविष्य में उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज परिवार के सदस्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कई बार उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी समय नहीं मिलता है।
2: बिल्कुल,
1: पिकनिक और यात्रा परिवार के सदस्यों को साथ में समय बिताने का भी अवसर देती है। हम देखते हैं कि अगर हम परिवार के साथ समय बिताते हैं तो हमें पारिवारिक संबंधित भी कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं।
2: जी हाँ,
1: जैसे कि आपसी प्रेम है वो भी बढ़ता है, हमारे रिश्ते हैं वो भी मधुर होते हैं, संवाद है वो भी बेहतर होते हैं, परिवार में एकता बढ़ती है और साथ ही बच्चों और बड़ों के बीच समझ भी विकसित होती है।
2: जी हाँ,
1: श्रोता
2: हाँ।
1: साथियों, परिवार के साथ बिताए गए ये पल जीवन भर यादगार बन जाते हैं।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। और जैसा कि हमने हमारे युवा साथियों को ये तो बताया था कि घूमने फिरने से ढेर सारे फायदे होते हैं।
1: जी हाँ,
2: अगर एक और बात यहाँ पर जाने साथियों, तो शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।
1: जी,
2: क्योंकि जागृति जी, घूमने फिरने के दौरान हम पैदल चलते हैं, चढ़ाई करते हैं और अलग अलग गतिविधियों में भाग लेना हमें पड़ता है। इससे शरीर हमारा सक्रिय रहता है और स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। देख सकते हैं कि नियमित रूप से इस प्रकार की यात्रा या फिर पिकनिक में भाग लेने से लोगों में मोटापा, आलस्य और तनाव जैसी समस्याएं भी कम देखी जाती है।
1: बिल्कुल,
2: साथ ही जैसा कि आपने भी बताया था कि किताबों में पढ़ा गया ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वास्तविक जीवन का अनुभव उससे भी ज्यादा मूल्यवान होता है।
1: जी हाँ,
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि यात्राएं युवाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। नए दृश्य, नई संस्कृति और नए अनुभव मन में नए विचार उत्पन्न करते हैं। कई महान लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक अपने अनुभव से प्रेरणा लेकर ही महान कार्य कर सके हैं।
1: जी हाँ,
0: इसलिए यात्रा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि रचनात्मक विकास का भी माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: घूमने फिरने से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। जब युवा कई लोगों के जीवन संघर्ष और उपलब्धियों को देखते हैं तो उन्हें अपने जीवन की चुनौतियां छोटी लगने लगती है।
2: बिल्कुल,
0: वे समझते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है और उनसे घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि यात्रा का हर अनुभव जीवन का अनमोल सबक है।
1: बिल्कुल जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तकनीकी ने जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके कारण लोग घरों और कार्यालयों तक ही सीमित रह गए हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने लोगों की सक्रियता को कम कर दिया है।
2: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में हम देखते हैं कि घूमना फिरना और पिकनिक पहले से भी अधिक आवश्यक हो जाता है। यह हमें वास्तविक दुनिया से जोड़ते हैं साथियों, और जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं।
2: जी हाँ,
1: साथ ही जागृति जी और कशिश, कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि घूमना फिरना और पिकनिक मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
2: बिल्कुल,
1: ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं है साथियों, बल्कि मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, ज्ञान वृद्धि, सामाजिक विकास और पारिवारिक एकता के प्रभावी माध्यम भी है।
2: बिल्कुल,
1: यात्रा व्यक्ति को नई ऊर्जा, नई सोच, नए अनुभव प्रदान करती है। वही पिकनिक जीवन में आनंद, उत्साह और अपनापन को भी बढ़ाती है।
2: जी हाँ, बिल्कुल मनीषा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यात्रा को एक चलता फिरता विद्यालय कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास की पुस्तक में पढ़ा गया कोई स्मारक जब अपनी आंखों से हम देखते हैं तो उसका प्रभाव अधिक गहरा होता है।
1: जी हाँ,
2: विज्ञान, भूगोल, संस्कृति और समाज से जुड़ी अनेक बातें यात्रा के माध्यम से ही हमें सहज रूप से सीखी जा सकती है जागृति जी।
1: बिल्कुल,
2: इसलिए विद्यालयों में हम देखते हैं कि समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है।
1: जी हाँ,
2: ऐसे में हमारे युवा साथियों को भी यात्राएं करनी चाहिए, जैसे कि वे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, आप ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
2: साथ ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक जो स्थल होते हैं उनकी यात्रा भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको ढेर सारी बातें सीखने को मिलेंगी।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि घूमने फिरने और पिकनिक का आनंद लेते समय कुछ बातों का ध्यान बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने भी बताया था, युवाओं के लिए भी बहुत जरूरी है कि वे यात्रा को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखें, बल्कि उसे सीखने और स्वयं को विकसित करने का अवसर माने। हम देखते हैं मनीषा कि हर यात्रा से कुछ नया सीखने का प्रयास हमें करना चाहिए, इससे यात्रा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि घूमना फिरना और पिकनिक जीवन को आनंद, ऊर्जा और नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण साधन है। ये युवाओं को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक गुण, आत्मविश्वास और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यात्रा व्यक्ति को केवल स्थानों से नहीं बल्कि अनुभव, संस्कृतियों और जीवन के वास्तविक पाठों से भी जोड़ती है।
2: बिल्कुल,
0: इसलिए युवाओं को अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर प्रकृति के बीच जाना चाहिए, नए स्थानों को देखना चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि रास्तों को महसूस करने का नाम भी है। घूमिए, सीखिए, मुस्कुराइए और हर यात्रा को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर बनाइए। जब युवा दुनिया को देखने निकलता है तब दुनिया ही नहीं उसका अपना जीवन भी बदलने लगता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
2: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ हम मनोरंजन करवा दें।
2: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि यात्रा बनी जीवन की पहचान, ज्ञान, आनंद और सफलता का महावरदान।
1: जी हाँ।
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है बच्चों को भूख न लगने के कारण और उसके क्या उपाय हो सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कशिश की शिशु की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वही बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं।
0: जी हाँ,
1: जिस कारण खाने पीने में वे आनाकानी करते हैं और जब भी बच्चों को कुछ खिलाने की कोशिश की जाती है तो भूख न होने की बात कहकर वो खाने से बचते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, अगर शिशु पेट भरकर खाना नहीं खाता है तो इसके पीछे साधारण से लेकर कुछ गंभीर कारण भी हो सकते हैं। तो आज हम कार्यक्रम में कशिश इसी विषय पर ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं हमारे श्रोता साथियों के साथ में।
0: जी हाँ।
1: कि बच्चों को भूख न लगने के क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से छोटे मोटे उपाय कर हम इस स्थिति से बच सकते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें तो ढेर सारी होंगी लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों को गीत सुनवाएं हम पहले।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ,
2: लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जुमा रहा तो।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में भूख न लगने की क्या कारण हो सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: अब यही अंजलि जी, अगर हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं कि बच्चों को भूख न लगने का क्या मतलब हो सकता है, तो श्रोता साथियों, भूख न लगने का सबसे साधारण मतलब यह होता है कि बच्चे का अपनी मर्जी से या किसी अन्य कारण से पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं कर पाना। कह सकते हैं श्रोताओं कि बच्चे की ठीक तरह से भोजन न करने से उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और उसका जो विकास दर है वो भी धीमा होने लगता है।
1: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि 2 से 5 साल तक के बच्चों को भूख न लगना या कम लगना आम समस्या होती है। इस उम्र के लगभग कई बच्चों में यह समस्या देखी जाती है। ऐसे बच्चे खाना खाने से मना करते हैं, फिर धीरे धीरे खाने की बातों के प्रति रुचि कम होने लगती है और उनका कुछ भी खाने को मन नहीं करता।
0: जी बिल्कुल।
1: यही बात करें कि क्या कारण है श्रोता साथियों भूख न लगने के, तो हम देखते हैं कि बच्चों को भूख न लगना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी बीमारी के लक्षणों में से एक होता है, जैसे कि पेट में कीड़े होना, गलसुआ होना, दांत आना, शरीर में आयरन की कमी होना, हेपेटाइटिस ए का टीकाकरण, एनीमिया, ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के अलावा बच्चों को भूख न लगने के कुछ अन्य कारण भी हैं, जो कशिश आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, दोस्तों अगर आप अपने बच्चे पर खाना खाने के लिए दबाव डालते हैं तो ऐसे में आप देखते हैं कि बच्चा खाना खाने से मना कर रहा होता है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही पेय पदार्थ जैसे कि दूध या जूस या फिर कोई मीठे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन से भी बच्चों को भूख नहीं लगती है अंजलि जी। कई बार परिवार वालों के डर से भी, धमकी से भी, या फिर कह सकते हैं कि सजा के डर से भी बच्चे खाना खाने से मना कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और हम देखते हैं कि कई बच्चे दूसरों का ध्यान खींचने के लिए भी खाना नहीं खाते हैं।
1: जी हाँ, हम देखते हैं कशिश के एक उम्र के बाद बच्चे अपनी पसंद की चीजें खाना ही पसंद करते हैं और माता पिता के अनुसार खाना वे पसंद नहीं करते।
0: जी बिल्कुल।
1: कई बार बच्चे परिवार के सदस्यों की नकल उतारते हैं, ऐसे में अगर परिवार का कोई सदस्य किसी विशेष आहार का सेवन नहीं करता तो बच्चे भी वह खाने से मना कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें पता चलते हैं कि बच्चों को भूख नहीं लग रही है। और यही बात करें कुछ ऐसी चीजों की जो प्रमुख तौर पर बच्चों में देखी जाती है कि 1 महीने तक भूख की कमी रहना, खाना खत्म करने में समय लगना, स्वयं खाना खाने से मना करना, खाते समय नखरे करना या चिड़चिड़ापन दिखाना, आधी रात को खाने की जिद करना, अधिक समय तक स्तनपान या बोतल से दूध पीने की जिद करना, समय और उम्र के साथ आहार की मात्रा का न बढ़ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि बच्चे जो हैं उन्हें भूख कम लग रही है या न के बराबर लग रही है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में आज हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही है, हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों में भूख न लगने की आदत पड़ जाती है और कई बार वो बच्चे ऐसे ही झूठ मूठ में खाना खाने में आनाकानी करने लगते हैं। तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे भी कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है, यही बात करें कि बच्चों के लिए कितनी मात्रा में भोजन पर्याप्त होता है।
1: हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, लगभग 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध का ही सेवन करता है। 6 महीने के बाद बच्चों को ठोस आहार दिया जाता है। अगर हम बात करें 6 से 12 महीने तक के बच्चे के लिए, तो श्रोता साथियों, इस उम्र के बच्चे आधा कप नर्म आहार लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: उसके लिए हम उन्हें मेश किया हुआ केला, उबले हुए मटर, गाजर, शकरकंद, नाशपाती और इसके साथ माँ का दूध भी पिला सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ अगर बात करें 9 से 12 महीने तक के बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, तो उन्हें हम उबली हुई सब्जियाँ, छिले हुए फल, खिचड़ी, शीरा, खीर, ये सारी चीजें दे सकते हैं। और ये सारी चीजें दिन के 2 ठोस आहार के बीच में 3 से 4 बार हम थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, इस तरीके से ये जो आहार की चीजें हैं वो उम्र के अनुसार बढ़ती जाती है, और इन सारी बातों का अगर माताएं ध्यान रखती हैं कशिश, तो हम देखते हैं कि बच्चों का विकास सही तरीके से होने लगता है।
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: बच्चे अगर इन सारी चीजों को खाने से मना करते हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं बच्चों के अंदर, उसकी वजह से वो मना करते हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन लंबे समय तक अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं और उन्हें भूख नहीं लग रही है, तो हम चिंता कर सकते हैं और तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि समस्या कुछ ज्यादा बढ़े उससे पहले निवारण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ दिलीप जी। इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए कुछ तरीके भी अपना सकते हैं। जैसे कि साथियों, जब बच्चा आपका खाना खाए तो उसे टीवी, वीडियो गेम, मोबाइल या फिर कहें कि कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज से आप दूर रखें।
0: जी हाँ।
1: बच्चे को हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ आप खिलाते रहें। साथ ही कोशिश करें कि बच्चे के खाने का समय आधे घंटे से ज्यादा न हो, वरना बच्चा बोर होने लगता है।
0: जी हाँ।
1: कह सकते हैं कि बच्चे को हर समय एक ही तरह का खाना न खिलाएं। उसके खाने में आप अलग अलग चीजें दे सकते हैं आप उसे, जिससे उसकी खाने में रुचि बनी रहेगी।
0: जी बिल्कुल कशिश। इसके साथ अगर बच्चा खाने से मना कर रहा है तो जबरदस्ती खाना उसके मुंह में हमें नहीं डालना है। जब बच्चा चम्मच पकड़ना सीख जाए तो खाने के लिए उसे एक अलग चम्मच देनी है।
1: हाँ।
0: स्वयं खाने के लिए हमें उसे प्रोत्साहित भी करना है और शुरुआत में ढेर सारा खाना हमें नहीं देना है, थोड़ा ही खाना देना है। जब बच्चा प्लेट में रखा खाना खत्म कर दे तभी आप उसे और भी दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: खाने के समय हमें स्नैक्स, जूस या अधिक मात्रा में पीने के लिए दूध नहीं देना चाहिए। इन सब की वजह से हो सकता है कि बच्चा खाना ठीक से न खा पाए। श्रोता साथियों, 2 समय के खाने के बीच में, जैसे कि लंच और डिनर के बीच में, शाम को स्नैक हम बच्चों को दे सकते हैं। इस बात का भी ध्यान हमें जरूर रखना है कि उसकी मात्रा अधिक न हो।
1: जी बिल्कुल।
0: यदि बच्चा खाना खाने में नखरे करता है तो उसे डराने, धमकाने या सजा देने की जगह उसे प्यार और धैर्य के साथ हमें व्यवहार करना होगा।
1: बिल्कुल। साथी श्रोता, उसके खाने और स्नैक्स का समय आप निश्चित पहले ही कर लें और एक समय प्रक्रिया बना लें। उसी के आधार पर बच्चे को आप खाना दें और अगर वह हर समय कुछ न कुछ खाता रहेगा तो सही खाने के समय अंजलि जी उसकी भूख खत्म हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल।
1: और वह ठीक से उस समय भोजन नहीं कर पाए। साथी श्रोता साथियों, आप कोशिश करें कि पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाए, क्योंकि अंजलि जी कई बार अकेले खाने से भी बच्चे का खाना खाने का मन नहीं करता है।
0: जी हाँ।
1: खाने के ऊपर सॉस या उसकी पसंद की चटनी आप डिजाइन कर सकते हैं, इससे उनकी खाने में रुचि और भी बढ़ेगी।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों बताना चाहेंगे कि बच्चों को फल और सब्जियों को उबाल कर उसकी प्यूरी बनाकर आप खिला सकते हैं। इससे उन्हें खाने में आसानी होगी और वे चाव से खा पाएंगे।
1: जी जी।
0: बच्चों को कितना खाना खाना है यह हमें उन पर ही छोड़ देना है। अगर वह खाना खत्म नहीं करता है तो उस पर ज्यादा दबाव हम न डालें। खाने की टेबल पर उससे बातें करें। जब बच्चा बात समझने लगे तो उन्हें अपने बचपन के किस्से सुनाएं और बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद था। आप उन्हें रंग बिरंगी सब्जियां, फल और बहुत सारी ऐसी चीजें खिलाकर उनके खाने के प्रति आकर्षण को बढ़ा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। साथी श्रोताओं, बच्चे को रोज नाश्ता करने की आदत आप डलवाएं। नाश्ता न करने से बच्चा भूखा और थका हुआ महसूस करेगा। साथ ही आपको बताएं तो स्नैक्स में आप अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे दे सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: उन्हें खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीच बीच में आप ट्रीट जैसे कि चॉकलेट दे सकते हैं, आइसक्रीम, कैंडी आप ये दे सकते हैं। लेकिन इन्हें रोजमर्रा के खाने में आप शामिल नहीं करें साथियों।
0: जी हाँ।
1: बच्चे के लिए खाने को लेकर पूरा दिन पीछे न पड़े यानी कि उन पर दबाव बिल्कुल न डालें। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो आप विकल्प के तौर पर उसे दूध न दें। साथ ही जब बच्चे को भूख लगे तो उसे किसी प्रकार का पैक्ड फूड भी आप न दे श्रोता साथियों।
0: जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिनके माध्यम से हम बच्चों को खाने के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें खाना खिला सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: दोस्तों यही बात करें कि बच्चों की भूख बढ़ाने के कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे कि हमें उन्हें आयरन युक्त आहार देना है, विटामिन सी युक्त आहार देना है, मीठे खाद्य पदार्थ देने से हमें बचना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। तो श्रोता साथियों, आशा करते हैं कि ये जो सभी बातें रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चों का पर्याप्त मात्रा में भोजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके विकास की जो दर है वो कम हो जाती है और सही तरीके से उनका विकास नहीं हो पाता।
1: जी
0: हाँ। तो ऐसे में कशिश आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी।

0: तो श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: मिट्टी लगा के बेड बनाई है, वहां से वो नाली से अतिरिक्त जल है वो निकल जाए, ताकि उसकी जड़ें है वो सड़े नहीं और जो आपकी फसल है वो लंबे समय तक आपको जो है
1: लाभ
0: पहुंचाती रहे या उत्पादन देती रहे।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा।
0: तो इसके लिए हमको तरह जो है हमको ध्यान रखना हो चाहिए। इसके साथ ही हमको ये भी देखना चाहिए कि हम उसके साथ में और कौन सी फसलें लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो उसके साथ में जैसे कि हमने बेल वाली सब्जियां लगा ली, फिर उसके पास में हमने मिर्ची, बैंगन, ठीक है, इस तरह की जो हमारे यहाँ की परंपरागत सब्जियां हैं और जो पानी को सहन कर सकती है, जो वर्षा ऋतु में हो सकती है, जैसे भिंडी है, तो इस तरह की सब्जियां हमको उसके साथ में लगानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा जो है हम बेड बना रहे हैं तो अंदर जैसे कि हम बेड के पास पास में कई कई बीच बीच में हमको हल्दी, अदरक, इस तरह की फसलें हैं वो कर देना चाहिए, ताकि वो छाया में अच्छी तरह से उगे और उनको नमी की जरूरत भी होती है, तो उस तरह से वो जमीन के अंदर भी आपको फसल मिलेगी और जमीन के बाहर जो आपका बेल वाली सब्जियां है या दूसरी सब्जियां है वो भी आपको फसल देगी। तो इस तरह का हमको जो है प्लान करना चाहिए। और अधिकतर हमको जैसे वर्षा ऋतु में जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो उनको थोड़ा नुकसान होता है, तो उनको नुकसान से बचने के लिए हमको जल निकासी की जो व्यवस्था है, हम एक क्यारी बनाएंगे जहाँ पे हम पत्तेदार सब्जियां करेंगे, तो हमको वहां से ढलान इस तरह से देना है उसको बेड बना के, ताकि अतिरिक्त पानी वो नीचे चला जाए और वो जल निकासी मार्ग से वो पानी बाहर चला जाए, ताकि वो फसल आपकी सड़े नहीं और जो आपने सोचा है कि मुझे इतना लाभ होना चाहिए उतना लाभ उससे होगा।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे किसान भाई बहनों को ये बता रहे हैं कि वर्षा आधारित कौन कौन सी सब्जियां हैं जो वे कर सकते हैं और अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यहीं सर अब मैं जानना चाहूंगी कि सब्जियों में किस तरीके से उन्हें खाद की व्यवस्था करनी है, साथ ही इस मौसम में खरपतवार बहुत ज्यादा होता है तो उसका प्रबंधन उन्हें कैसे करने की जरूरत है।
0: हम पहले खरपतवार से चालू करते हैं, तो हम देखेंगे कि अतिरिक्त घास है वो निकल आती है या आपके खाद देने से उसके साथ में बीज चले जाते हैं या हवा से दूसरी जगह से उड़ के घास के बीज आ जाते हैं और वहां उगते हैं, जो कि आपका फसल का पोषण है वो खाते हैं, तो उनको हमको बीज आने से पूर्व उनको उखाड़ लेवे, उखाड़ने के बाद में हम उनको फेंके नहीं, हम उसको जो है वही जहाँ आपका फसल है उसी के वही डाले, और एक ध्यान रखना है कि हमको जड़ ऊपर रखनी है और पत्ते नीचे रखने हैं जब हमको उनको रखेंगे, ताकि वो धीरे धीरे धीरे एक तो वो जो हमने रखा है वो खरपतवार को उखाड़ के एक तो वो मल्चिंग का काम करेगा, दूसरा वो सड़के और खाद बना देगा, तीसरा हमने जड़े ऊपर रखी है। बहुत सी बार क्या किसान क्या करता है कि बताते हैं कि ठीक है इसको फेंकना नहीं है वही मल्च कर देना, तो जड़े नीचे रह जाती तो वो पुनः जड़ पकड़ लेता वापिस से, अगर हम जड़े ऊपर रखेंगे तो वो पुनः जड़ नहीं पकड़ेगा, सबसे पहले जड़ सूख जाएगी उसके बाद वो वापिस से पौधा नहीं बन पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इसका हम ध्यान रखें और ये अतिरिक्त खाद का भी काम करेगी और अतिरिक्त जो है फसल को हमारा जो है जल बचत का भी काम करेगी। इसके साथ ही हमको जो खाद की जो बात करी है आपने, तो अच्छा सा हमको सड़ा हुआ गोबर का खाद है हमको जो है 2 से 3 बार इन फसलों को बीच बीच में जो है 1 महीने के अंतराल में इनको देना चाहिए, ताकि इनकी पोषण जो है निरंतर बना रहे।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरी बात है कि जब फूल बनने की प्रक्रिया हो उस समय थोड़ा ध्यान रखें कि उस समय आप जो है वो खाद नहीं रखें और फल बनने के बाद में आप खाद रखें। और बहुत सारी फसलें जो है जिनके निरंतर फूल और फल बनते रहते हैं वहाँ आप 1 महीने के अंतराल में अच्छा सा सड़ा हुआ खाद रखें, और खाद रखने के बाद में वो आपको देखेंगे कि देसी खाद से जो है आपकी सब्जियों की चमक अच्छी होगी।
1: बिल्कुल।
0: और ज्यादा दिन तक चलेगी, सड़ेगी नहीं, ये देसी खाद की सब्जियों के फायदे हैं।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बताया कि बारिश के मौसम में सब्जियों का उत्पादन हमारे किसान भाई बहन कैसे कर सकते हैं और आय का स्रोत अपना कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सर अंत में आप श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: श्रोता साथियों को अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप रासायनिक खाद का या रासायनिक दवाई का प्रयोग नहीं करके आप देसी खाद और देसी दवाई का उपयोग करें। देसी दवाई में जैसे दसपर्णी है, नीम की पत्तियों का है, नीम का तेल का स्प्रे है, इस तरह का आप करके और इससे काफी मात्रा में जो है आपकी बीमारियां कंट्रोल हो जाती है और अच्छा उत्पादन देती है।
1: बिल्कुल, तो सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया। धन्यवाद। आशा करा हो कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है आपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानू। तो सूटा तो पड़ा, पर साथे पहले हमरी लाइक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, यहाँ आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है दिशाटन के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु प्राणी हैं, हम हमेशा से नई जगहों को देखने, नए लोगों से मिलने और नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यही जिज्ञासा हमें अपने घर और क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकलकर देश विदेश के कई स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल,
0: देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करना ही दिशाटन कहलाता है। श्रोताओं, दिशाटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये ज्ञान, अनुभव, संस्कृति, व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। दिशाटन मनुष्य के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है अंजलि, और हमें जीवन के विविध रंगों से परिचित कराता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि दिशाटन यानी अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों, राज्यों, शहरों और गांवों की यात्रा करना, यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सीखने, समझने और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो बातें करेंगे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है देशाटन के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, देशाटन यानी कि घूमना या भ्रमण करना, कई देशों स्थानों प्रदेशों का भ्रमण करना देशांतरण होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति कई संस्कृतियां, परंपरा, भाषा और जीवन शैलियों के निकट आता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि पुस्तकों से ज्ञान मिलता है लेकिन यात्राएं उस ज्ञान को अनुभव में बदल देती है।
0: बिल्कुल।
1: देशांतरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें हमारा ज्ञान बढ़ता है। किताबों में हम किसी स्थान के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर जो अनुभव मिलता है वह कहीं अधिक प्रभावशाली होता है।
0: जी हाँ।
1: जब हम राजस्थान के रेगिस्तान, हिमालय की पर्वत श्रृंखला, केरल की हरियाली, असम की चाय बागवान या गुजरात के रण को अपनी आंखों से देखें, तो भूगोल केवल एक विषय नहीं रह जाता, बल्कि जीवंत अनुभव बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: यात्रा हमें सिखाती है जागृति जी कि हमारा देश कितना विशाल है, विविधतापूर्ण है और समृद्ध है।
0: और हम कह सकते हैं अंजलि कि संसार स्वयं एक विशाल विद्यालय है और देशाटन उसका सबसे प्रभावी शिक्षक है।
1: बिल्कुल।
0: पुस्तकों से हमें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, लेकिन देशाटन हमें व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, जैसा कि अभी आपने बताया था। हिमालय की ऊंची चोटियों को देखकर हमें प्रकृति की महानता का अनुभव होता है।
1: जी जी।
0: रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों को देखकर संघर्ष और धैर्य की सीख मिलती है। ऐतिहासिक स्थलों को देखकर हमें अपने अतीत की गौरवशाली विरासत का ज्ञान प्राप्त होता है।
1: जी हाँ।
0: इस प्रकार श्रोता साथी, हम कह सकते हैं कि देशाटन शिक्षा का ऐसा माध्यम है जो जीवन भर याद रहता है।
1: जी जी।
0: भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक भाषाएं होती है, वेशभूषाएं होती है, अलग अलग खान पान होते हैं और परंपराएं हमें देखने को मिलती है। देशाटन के माध्यम से व्यक्ति इन विविधताओं को समझता है अंजलि, और उनके प्रति सम्मान का भाव विकसित करता है।
1: जी हाँ जागृति जी, भारत अनेक भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है। कभी कभी हम केवल अपने क्षेत्र की संस्कृति को ही जानते हैं, लेकिन जब हम देश के अन्य भागों में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनकी जीवन शैली को समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि विविधता के बावजूद हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं। देशाटन लोगों के बीच आपसी प्रेम, सम्मान और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है और यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: कई बार जागृति जी, हम बिना जाने किसी क्षेत्र, भाषा या समुदाय के बारे में धारणाएं बना लेते हैं, लेकिन जब हम यात्रा करते हैं और लोगों से सीधे मिलते हैं तो हमारी गलतफहमियां दूर होती हैं। देशाटन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति और हर संस्कृति में कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है। यात्रा मन को खुला बनाती है और हमें दूसरों को समझने की क्षमता प्रदान करती है।
0: बिल्कुल अंजलि, जब कोई व्यक्ति राजस्थान से केरल जाता है या पंजाब से तमिलनाडु की यात्रा करता है, तब उसे ये अनुभव होता है कि भले ही हमारी परंपराएं अलग अलग हो, लेकिन हम सभी एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं।
1: बिल्कुल।
0: देशांतरण राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देशाटन व्यक्ति के आत्मविश्वास और व्यवहारिक कौशल को बढ़ाता है। यात्रा के दौरान व्यक्ति नई परिस्थितियों का सामना करता है श्रोताओं, समस्याओं का समाधान खोजता है और कई प्रकार के लोगों से संवाद करता है अंजलि। इससे उसका व्यक्तित्व निखरता है। यात्रा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। ये वो समय प्रबंधन है, संसाधनों के उचित उपयोग है, निर्णय लेने की कला सिखाता है।
1: जी जी।
0: यही गुण आगे चलकर हमारे जीवन और करियर में सफलता का आधार बनते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति नई जगहों पर जाता है, नए लोगों से मिलता है, नई परिस्थितियों का सामना करता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: यात्रा के दौरान कई छोटी बड़ी चुनौतियां आती हैं, रास्ता ढूंढना, समय का प्रबंधन करना, नए वातावरण में स्वयं को ढालना, इन अनुभवों से व्यक्ति अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनता है।
0: बिल्कुल।
1: विशेष रूप से युवाओं के लिए देशाटन जीवन कौशल सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत में अनेक ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किले, संग्रहालय हैं। ये केवल इमारतें नहीं हैं, बल्कि जागृति जी हमारे इतिहास और संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। जब हम इन स्थानों का भ्रमण करते हैं तो हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों, संघर्षों और विरासत के बारे में जानने का अवसर मिलता है। देशाटन हमें अपनी संस्कृतियों से जोड़ते हैं और उनमें गर्व की भावना पैदा करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि। तो अंजलि, जैसे कि देशांतरण के महत्व के बारे में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातचीत रह रही है, तो ये बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर देशाटन के माध्यम से ही हमें मिल पाता है। श्रोता साथियों, पर्यटन और देशांतर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। जब पर्यटक किसी क्षेत्र में आते हैं तो स्थानीय दुकानदारों, हस्तशिल्प कलाकारों, होटल संचालकों, वाहन चालकों और अन्य लोगों को रोजगार मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार देशाटन केवल यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है। जागृति जी, आज के व्यस्त जीवन में लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। देशांतर हमें पहाड़ों, नदियों, जंगलों, झीलों और समुद्र के निकट ले जाता है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मानसिक तनाव कम होता है, मन प्रसन्न रहता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।
1: जी हाँ,
0: जागृति जी, हमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व का एहसास भी हो पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप बता रहे हैं, तो जब व्यक्ति प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण करता है तब उसे पर्यावरण संरक्षण के महत्व का वास्तविक अनुभव होता है।
0: जी जी,
1: वो समझता है कि प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण कितना जरूरी है। देशांतर लोगों को स्वच्छता, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के प्रति जागरूक बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: इससे श्रोता साथियों पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी विकसित होती है। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट और तकनीक के माध्यम से दुनिया की जानकारी हमें घर बैठे मिल जाती है, फिर भी वास्तविक अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। अंजलि, किसी स्थान की तस्वीर देखना और उस स्थान को स्वयं अनुभव करना दोनों ही अलग अलग बातें होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: देशांतर हमें वास्तविक जीवन से जोड़ता है। ये हमें लोगों की भावनाओं, संस्कृति और परिस्थितियों को समझने का अवसर देता है। इसलिए श्रोता साथियों, डिजिटल युग में भी देशांतर का महत्व कम नहीं हुआ है बल्कि और अधिक बढ़ गया है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि देशांतर का आनंद तभी सार्थक है जब हम जिम्मेदार यात्री बने। यात्रा के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुंचाएं और स्थानीय लोगों के प्रति विनम्र व्यवहार रखें। एक जिम्मेदार यात्री न केवल अच्छी यादें लेकर लौटता है बल्कि अपने पीछे सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ता है। देशांतर केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया नहीं है जागृति जी, बल्कि यह स्वयं को जानने, दुनिया को समझने की यात्रा है। यह हमारे विचारों को व्यापक बनाता है, अनुभवों को समृद्ध करता है और हमें एक बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।
1: जी हाँ,
0: जब हम अपने देश को करीब से देखते हैं श्रोता साथियों, तब हमें उसकी विविधता, चुनौतियों और संभावनाओं का वास्तविक परिचय मिलता है। देशांतर हमें यह सिखाता है कि भारत केवल नक्शे पर बना एक भूभाग नहीं बल्कि करोड़ों सपनों, संस्कृतियों और परंपराओं और भावनाओं का जीवन संगम है।
1: बिल्कुल अंजलि, और यही हमें सिखाता है कि दुनिया किताबों के पन्नों से कहीं अधिक विशाल है और अनुभव से भरी हुई है। जब हम नए स्थानों को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और नए संस्कृतियों को समझते हैं, तब हमारे भीतर ज्ञान, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास का विकास होता है।
0: बिल्कुल,
1: देशांतर हमें संकीर्ण सोच से निकाल कर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा एक जागरूक, जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।
0: जी जी,
1: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये कहना चाहेंगे कि आज के युवाओं को देशांतर को केवल घूमने फिरने का साधन नहीं मानना चाहिए बल्कि सीखने और स्वयं को विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अपने देश को निकट से जानता है वही उसके विकास और उन्नति में सार्थक योगदान दे सकता है। इसीलिए आइए श्रोता साथियों, हम देशांतर की भावनाओं को अपनाएं, अपने देश की विविधता को समझें और एक सशक्त, जागरूक तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
0: जी हाँ जागृति जी, वास्तव में जो व्यक्ति यात्रा करता है वह केवल एक नया स्थान नहीं दिखता बल्कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानता है।
1: बिल्कुल,
0: उसके विचारों का दायरा विस्तृत होता है, अनुभवों का खजाना समृद्ध होता है और जीवन के प्रति उसकी समझ अधिक गहरी बनती है। इसलिए देशांतर को केवल मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना के विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाना चाहिए। एक जागरूक, संवेदनशील और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए देशांतर की भावनाओं को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को बस हम यही कहना चाहेंगे कि देशांतर केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को समझने और स्वयं को बेहतर बनाने की अनमोल प्रक्रिया है। जैसा कि आपने बताया, जो युवा देशांतर को अपनाते हैं वे अनुभव से समृद्ध होकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं।
0: जी जी,
1: इसलिए श्रोता साथियों, घर की चौखट से बाहर निकलिए, दुनिया को पहचानिए, देशांतर से ज्ञान को बढ़ाइए और जीवन को महान बनाइए।
0: जी हाँ, तो जागृति जी, अभी इन्हीं बातों के साथ समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करवा देते हैं श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से देशाटन के महत्व को लेकर वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषय की।
0: जी
1: आज का विषय है मोबाइल और बढ़ते स्क्रीन टाइम का स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर। हम देखते हैं कि मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई हो, काम हो, मनोरंजन हो या फिर किसी से संपर्क करना हो, मोबाइल हर जगह हमारे साथ है। लेकिन क्या श्रोता साथियों, आपने कभी सोचा है जिस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है वही हमारे सेहत के लिए धीरे धीरे एक चुनौती बनता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: आज बच्चे हो या बड़े, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक घंटों मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखते हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और ऑनलाइन गतिविधियों ने मनीषा स्क्रीन टाइम को इतना बढ़ा दिया है कि इसका असर अब हमारे शरीर, दिमाग और सामाजिक जीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। आज कार्यक्रम में हम विस्तार से यही जानेंगे कि मोबाइल और बढ़ते स्क्रीन टाइम ने किस तरीके से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा की हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ मनोरंजन करवा दी हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल और स्क्रीन टाइम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, टेबलेट, कंप्यूटर और अन्य स्क्रीन आधारित उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षा, मनोरंजन, संचार, बैंकिंग, खरीदारी, कार्यालय के अधिकांश कार्य हम मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही करने लगे हैं। तकनीकी ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है साथियों, लेकिन इसके अधिक उपयोग ने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी जन्म दिया है।
1: बिल्कुल,
0: वर्तमान समय में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग स्क्रीन के सामने पहले की तुलना में अधिक समय बिताने लगे हैं।
1: हाँ।
0: श्रोता साथियों, यही कारण है कि स्क्रीन टाइम आज की एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है।
1: बिल्कुल, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्क्रीन टाइम का अर्थ है वह समय जो हम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताते हैं।
0: जी हाँ।
1: जब यह समय जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारे स्वास्थ्य, व्यवहार और दिनचर्या को प्रभावित करने लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जरूरत और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन आज स्थिति यह है कि कई लोग प्रतिदिन 5 से 8 घंटे या उससे भी अधिक समय मोबाइल पर बिताते हैं। हम देखते हैं कि बढ़ते स्क्रीन टाइम के कई कारण हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का आकर्षण। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म लोगों को लंबे समय तक स्क्रीन से जोड़े रखते हैं। डिजिटल शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम की वजह से स्क्रीन का उपयोग बढ़ा है। बच्चे और युवा घंटों गेम खेलने में समय बिताते हैं। पहले लोग मैदानों में खेलते थे, परिवार के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब मनोरंजन का हिस्सा मोबाइल तक सिमट गया है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ गया है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम का सबसे अधिक प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। लगातार स्क्रीन टाइम देखने से आंखों को आराम नहीं मिल पाता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आंखों की थकान। हम देखते हैं कि लंबे समय तक मोबाइल देखने से आंखों की मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे आंखों में भारीपन और असुविधा महसूस होने लगती है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि इससे हमारे आंखों में सूखापन है वो भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम स्क्रीन देखते हैं तो सामान्य से कम बार हमारी पलकें झपकती हैं, इससे आंखों की नमी कम होने लगती है साथियों, और आंखों में सूखापन आने लगता है।
1: जी हाँ मनीषा, और इसका प्रभाव हमारे नींद पर पड़ता है।
0: जी हाँ।
1: रात को सोने से पहले मोबाइल चलाना आज आम बात हो गई है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर में नींद लाने वाले हार्मोन्स मेलाटोनिन के निर्माण को प्रभावित करती है। इसके कारण हम देखते हैं कि नींद देर से आती है, नींद पूरी नहीं होती, बार बार नींद टूटती रहती है, सुबह थकान महसूस होती है। श्रोता साथियों, लगातार खराब नींद से शरीर की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं मनीषा कि अधिक स्क्रीन टाइम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है।
0: जी हाँ।
1: तनाव और चिंता की बात करें तो सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर कई लोग स्वयं की तुलना करने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: तनाव और चिंता बढ़ सकती है। इसी के साथ मोबाइल से दूर होने पर बेचैनी या गुस्सा आना डिजिटल निर्भरता का संकेत हो सकता है। लगातार बदलती जानकारी और वीडियो देखने की आदत ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी कम कर सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से मोबाइल और स्क्रीन टाइम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे लेकर बातें चल ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि बढ़ते स्क्रीन टाइम के क्या कारण हैं, साथ ही आंखों पर और नींद पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: अब यही बात करें बच्चों पर विशेष क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्रोता साथियों, बच्चों में अधिक स्क्रीन टाइम कई समस्या पैदा कर सकता है। बच्चे बाहर खेलने के बजाय मोबाइल पर समय बिताने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त को प्रभावित कर सकती है।
1: जी हाँ।
0: मोबाइल के कारण बच्चों का लोगों से सीधा संवाद कम होने लगता है। कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि मोबाइल देखते समय अधिकांश लोग गर्दन झुकाकर बैठते हैं। इससे गर्दन दर्द, कंधों में दर्द, पीठ दर्द और शरीर की गलत मुद्रा हो जाती है। ऐसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आजकल कम उम्र में लोगों में ये सारी जो समस्याएं हैं वो तेजी से देखने को मिल रही है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गलत बैठने की आदत है वो भी ज्यादा बढ़ रही है। स्क्रीन के सामने घंटों बैठने से शरीर की मुद्रा प्रभावित होती है,
0: बिल्कुल,
1: जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। साथ ही हम देखते हैं कि मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। जो लोग अधिक समय मोबाइल या कंप्यूटर पर बिताते हैं साथियों, वे कम शारीरिक गतिविधियां करते हैं।
0: जी जी।
1: इससे हम देखते हैं कि वजन बढ़ने लगता है और मोटापे का जोखिम है वो बढ़ने लगता है। साथ ही यही बात करें अगर मांसपेशियों की जकड़न की, तो हम देखते हैं कि एक स्थिति में लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर की मांसपेशियां हैं वो भी जकड़ जाती है और दर्द होने लगता है।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, जब व्यक्ति लंबे समय तक बैठा रहता है और शारीरिक गतिविधियां कम करता है तो उसका प्रभाव हृदय स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। निष्क्रिय जीवन शैली, मोटापा, उच्च रक्तचाप, अन्य स्वास्थ्य जोखिम है वो बढ़ सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, स्क्रीन टाइम के साथ नियमित शारीरिक गतिविधियां भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं।
0: जी हाँ मनीषा, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार को भी प्रभावित करता है।
1: जी बिल्कुल।
0: कई बार परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इससे बातचीत कम होती है, भावनात्मक जुड़ाव घटता है और रिश्तों में दूरी पड़ सकती है। इसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्क्रीन टाइम को कम करने के कुछ उपाय हैं जो हमें अपनाने हैं।
1: जी।
0: इसके लिए हमें मोबाइल का उपयोग निश्चित समय निर्धारित करना होगा कि
1: जी
0: हम उसी समय पर मोबाइल को हाथ लगाएं। सोने से कम एक घंटा पहले स्क्रीन का उपयोग बंद करना है। मोबाइल की जगह बातचीत, खेल और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। शारीरिक गतिविधियां स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो हमें उनको प्रेरित करना है और हमारे बच्चों को सिखाना है कि जो परंपरागत खेल थे वो किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर 20 से 30 मिनट बाद कुछ देर आंखों को और शरीर को हमें आराम देने की जरूरत है। भोजन के समय और परिवार के साथ बैठते समय मोबाइल का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है।
1: जी
0: ये
1: हाँ।
0: कुछ ऐसे सामान्य आदत हैं जिसके माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मोबाइल तकनीक का एक अद्भुत साधन है। ये ज्ञान, संपर्क और सुविधाओं का विशाल संसार हमारे हाथों तक पहुंचाता है, लेकिन हर सुविधा तभी लाभदायक होती है मनीषा, जब उसका उपयोग संतुलित तरीके से किया जाए। समस्या मोबाइल में नहीं बल्कि उसके अनियंत्रित उपयोग में है। आज आवश्यकता
1: हाँ।
0: इस बात की है श्रोता साथियों कि हम तकनीक के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। यदि हम अपने बच्चों को खुला आकाश, खेल का मैदान, परिवार का साथ और किताबों की दुनिया देंगे तो उसका विकास अधिक संतुलित होगा। यदि हम स्वयं भी स्क्रीन और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति तभी बेहतर होगी। याद रखिए कि जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर किसी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद वास्तविक दुनिया में है। इसलिए तकनीक का उपयोग करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य, परिवार और खुशियों की कीमत पर नहीं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगी कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम आधुनिक जीवन की आवश्यकता बन चुके हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आंखों की समस्या, नींद में बाधा, मानसिक तनाव, गर्दन और पेट दर्द, मोटापा और साथ ही सामाजिक दूरी जैसी अनेक समस्याएं अत्यधिक बढ़ती जा रही हैं।
0: जी जी।
1: विशेष रूप से हम देखते हैं कि बच्चों और युवाओं को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। स्वस्थ जीवन के लिए तकनीकी और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, यदि हम मोबाइल और स्क्रीन का विवेकपूर्ण उपयोग करें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त पानी लें और वास्तविक जीवन में संबंधों को महत्व दें, तो श्रोता साथियों हम डिजिटल युग से भी बेहतर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही स्वस्थ और संतुलित जीवन की पहचान है।
0: याद रखना होगा कि स्वस्थ आंखें, शांत मन, अच्छी नींद और मजबूत रिश्ते किसी भी मोबाइल से ज्यादा कीमती है। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, जीवन का स्थान लेने के लिए नहीं।
1: जिसे
0: सकारात्मक सोच के साथ अपने स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें, एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन कर लें एक और गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहीं, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एवो केवाय जैवीरे एक बैरू मजबूत बने हैं, तैवीरे पूरो परिवार मजबूत बने हैं।
4: पण मजबूती खाली शब्द केवा थकी नती आवती, आवे है अधिकार थकी, सुरक्षा थकी अने आपड़े अस्तित्व नी पहचान थकी।
3: जमीन पैसा माते बैरा नु नाम एने हपना नु पहलू पगतियो है।
4: इन्हें मले है आत्मविश्वास, रुपया की सुरक्षा अने अपना फैसला खुद लेवानी ताकत।
3: तो आओ बोलो आजे मलीने आवाज उठावो, एटले हंगरी सूर्ये हंगरी बुने हंगरी माए अपना हक ने जमी माते गर्व थकी उभी थई शके।
4: बोन ने अधिकार किम की अधिकारस असली ताकत है।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हम जब भी हाजिर होते हैं तो हम आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। और जैसा कि जो सपनों की उड़ान कार्यक्रम है वो हमारे सपनों को पंख देने वाला कार्यक्रम है साथियों, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर मैं बातचीत करने वाली हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और कई लोग जो है वो थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि यार ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है आपको बताऊं तो जिस विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूं वो हमारे सपनों की हकीकत है, और वो चीज हमें भीड़ से भी अलग बनाती है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूं आज के इस कार्यक्रम में अनुशासन को लेकर। साथियों, अनुशासन क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग हमेशा टाइम पर कैसे रहते हैं, कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य के करीब कैसे पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है श्रोता साथियों इन सभी बातों में, और वो है अनुशासन। दोस्तों, अनुशासन का मतलब क्या है? खुद से एक वादा। और आज के हम युवा क्या चाहते हैं? जल्दी सफलता, बिना मेहनत रिजल्ट। लेकिन श्रोता साथियों, सच्चाई तो ये है कि सफलता का मतलब होता है रोज का छोटा छोटा अनुशासन। तो आज के इस कार्यक्रम में साथियों इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए पहले मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, गीत संगीत भी कार्यक्रम में शुरू हो चुके हैं और गीत से पहले विषय तो मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया कि आज हम बात कर रहे हैं अनुशासन को लेकर। तो दोस्तों, अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को सजा दें और न ही इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी ही छोड़ दें, बल्कि अनुशासन का असली मतलब होता है साथियों खुद से किया हुआ एक वादा जो कि निभाना ही है। साथियों, जब आप खुद से ये कहते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और अगर आप सच में उठ जाते हैं तो वही अनुशासन है। जब आप खुद से ये कहते हैं साथियों कि आज मोबाइल में कम चलाऊंगा या चलाऊंगी, इसके विपरीत में पढ़ाई करूंगी या करूंगा, और आप सच में ऐसा करते हैं तो वो है श्रोता साथियों अनुशासन। यानी कि कहने का मतलब यही है कि मन में ऐसा ठान लेना और उस पर खरे उतरना ही अनुशासन है। साथियों, हम देखते हैं साथियों कि आज के हमारे युवाओं को क्या लगता है कि उनके सामने समस्याएं क्या हैं? मोटिवेशन की कमी, टाइम की कमी और संसाधनों की कमी। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी कमी है अनुशासन की कमी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, जानकारी भी है, लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम शुरू तो करते हैं लेकिन नियमित नहीं रहते। श्रोता साथियों, तो कह सकते हैं कि अनुशासन को हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी बात है कि टैलेंट जो है वो हमें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन अनुशासन ही हमें जीत दिलाएगा। मान लीजिए साथियों कि दो लोग हैं, एक जो है वो रोज मेहनत करता है और दूसरा कभी कभी। तो श्रोता साथियों, प्रश्न ये है कि जीत किसकी होगी? साफ है, जो नियमित रूप से मेहनत कर रहा है उसकी। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा भी जाता है कि कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि अनुशासन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है, ये आपको श्रोता साथियों फोकस करना सिखाता है और ये आपको अंदर से आत्मविश्वास भी देता है, और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों खुद पर भरोसा करना भी सिखाता है। क्योंकि दोस्तों जब हम बार बार खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, हाँ मैं कर सकता हूँ, और ये श्रोता साथियों सबसे बड़ी बात है। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें जारी रहेंगी, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है अनुशासन को लेकर, और गीत से पहले हम जैसा कि जान पाए थे कि अनुशासन कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। यही अगर बात करें तो अक्सर लोग ये सोचते हैं साथियों कि जब मेरा मन करेगा तब मैं काम करूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि मन कभी नहीं करेगा, मन हमेशा आराम ही चाहता है। इसलिए सफल लोग मन से नहीं दोस्तों अनुशासन से चलते हैं। अब साथियों सवाल ये है कि अनुशासन आएगा कैसे? तो कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि आपको छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करनी है साथियों, रोज आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है, एक ही समय पर काम करना है श्रोता साथियों, यानी कि हर काम का एक समय होता है जो आपको ही सेट करना होगा कि आपको उस काम को किस समय करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को बहाने देना बंद कीजिए साथियों, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पर यही कर देते हैं कि हम खुद से ये कहते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं इस काम को बाद में कर लूंगा, या फिर ये काम अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे पहले कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है वो हमें पहले करना है। हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करना है श्रोता साथियों, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क में बिलीव करेंगे दोस्तों तो देखते हैं कि आप मेहनत ही करते रह जाएंगे। इसलिए आप मेहनत करें लेकिन स्मार्ट वर्क में मेहनत करें श्रोता साथियों। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर दोस्तों, कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। हमें नियमित बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजना हमने बनाई है उसमें नियमित रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि अनुशासन अपने आप ही आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है श्रोता साथियों, ये आपकी आजादी है। क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने सपनों के मालिक खुद बनते हैं, आप अपनी जिंदगी खुद के हाथों में कंट्रोल कर पाते हैं। वरना श्रोता साथियों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको खुद ही ये पता नहीं चलेगा कि कब आपको जिंदगी खुद कंट्रोल करने लग जाएगी। तो आप अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको अनुशासन को तो अपनी जिंदगी में अपनाना होगा ही श्रोता साथियों। ऐसे में आप हमेशा याद रखें कि सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन चाहिए होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टैलेंट जो है वो हमें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचा सकता है। दोस्तों ऐसे में आज एक छोटा सा फैसला आप खुद से लें, मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनने की कोशिश करूंगा या करूंगी, ना किसी से तुलना करूंगी, ना किसी से जलन करेंगे, बस खुद से एक वादा करेंगे कि मैं खुद में सबसे अच्छा वर्जन बनूंगा। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो हमारा जीवन है वो एक माटी के समान है, इस जीवन को आप जैसा आकार देना चाहेंगे ये वैसा ही आपके साथ रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें मन के भरोसे नहीं रहना है कि मेरा मन जब करेगा तभी मैं काम करूंगा, क्योंकि मन तो हमारा श्रोता साथियों जैसा कि पहले भी बताया है कि कभी नहीं करेगा, और एक सही समय भी कभी नहीं आएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए, खुद को सफल बनाने के लिए अनुशासन को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अनुशासन जो है वो एक ऐसा परफेक्ट ऐसा विकल्प है श्रोता साथियों जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसे में दोस्तों हमेशा याद रखिए कि सपने हमेशा बड़े रखिए, लेकिन उन्हें पाने के लिए कदम छोटे छोटे रखिए, अपने समय की कदर कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण श्रोता साथियों बहाने करना छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब मन नहीं कर रहा हो किसी कार्य को करने का, तब भी उस कार्य को करना अनुशासन कहलाता है। इसलिए जो सफल और असफल में फर्क करे वही अनुशासन है श्रोता साथियों। इन्हीं बातों के साथ अब जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे ढेर सारी हो चुकी है, तो श्रोता साथियों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान। जैसा कि आज की इस उड़ान में हमने जाना कि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं होता, बल्कि उनको पूरा करने के लिए हर दिन हमें खुद से किया गया एक छोटा सा वादा भी निभाना पड़ता है, और वही वादा है अनुशासन। याद रखिए साथियों, जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, उस वक्त आप जो फैसले लेते हैं वही आपका भविष्य बनाते हैं। अनुशासन वही है जब आप मन नहीं है के बावजूद भी अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, आज बस एक छोटा सा वादा खुद से करिए, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा या करूंगी, चाहे हालात जैसे भी हो। क्योंकि दोस्तों, सपनों की असली उड़ान पंखों से नहीं अनुशासन से होती है। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। फिर मिलेंगे साथियों एक नए विचार, एक नई ऊर्जा और एक नई उड़ान के साथ में। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दीजिए श्रोता साथियों, अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। फिर मुलाकात होगी एक नए विचार, एक नई ऊर्जा और एक नई उड़ान के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके। शिक्षा थकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो। याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
5: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
5: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है?

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।